आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म तोहफा से अभी आपने गीत सुना। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। ना कल की फिक्र, ना आज का मलाल, दिल में प्यार और होंठों पर एक तरन्नुम है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छोटी बहन से ये गीत।

दोस्तों, जो पल हमारे पास आज हैं, उन पलों में जीना सीखिए, उन पलों का एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो पल फिर आने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, जिन पलों के साथ हम आपस में जुड़े हुए थे वो पल भी अब जा रहे हैं, और इसी के साथ ही अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आज दिन है मंगलवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन

हम लोग हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि परमात्मा ने जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वही जीवन हमें जीना है। पर जब हम अपने चारों ओर के वातावरण में इंसान के कर्मों पर एक नजर डालते हैं तो पाते हैं कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम

सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 270। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा। श्रृंखला सुनिएगा वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। ₹8:15 पर त्रिवेणी। ₹8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। ₹9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सेहतनामा। इसके अंतर्गत नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग रीमा जोशी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। ₹11 रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे से सखी सहेली। सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा अफवाहों से सावधान रहें। सखी विशेष मालिका सदानी। हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार। शरारत मुहावरों की दुनिया 1 से 21 होना। संवादक मंदाकिनी जोशी। आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चैटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन शाम सुनिएगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे झलकी ये न थी हमारी किस्मत। लेखन सत्यदेव नारायण सिन्हा। निर्देशक सीताराम यादव। 8:15 रात चित्रलोक सुनिएगा और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

बालीवध का प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, श्री राम समस्त प्राणियों को कठपुतली की तरह नचाते हैं। राम के आदेश पर सुग्रीव ने भाई का राज्य पाया और बाली पुत्र को युवराज घोषित किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 270।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से, आज हम किस राग का, हम मतलब मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ इसलिए हम, बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें, किस राग का चयन कर रहे हैं?
1: अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जो, जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है, उसे मियां मल्हार कहा जाता है।
0: जी, मियां की मल्हार भी कहते हैं।
1: मियां की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित है।
0: मियां तानसेन
1: जी। जी, तो मियां मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, मतलब ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं। यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता।
0: जी, और वही मल्हार का रूप है।
1: जी,
0: असली रूप है।
1: जी, तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है।
0: जी,
1: इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है।
0: लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग, ये जो मियां मल्हार या मियां की मल्हार है उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है और शुद्ध मल्हार के बारे

0: में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का
1: जी बिल्कुल
0: है,
1: जी
0: तो ये भी तो कुछ फर्क है
1: जी,
0: और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे
1: जी
0: तो
1: जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है।

0: वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे, चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपी हरा जो गाना है
1: जी,
0: वो मुझे याद आया
1: जी,
0: वो इसी राग में निबद्ध है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी।
1: तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित रामाश्रय झा जी की हैं
0: जी,
1: और जो धीमे तीन ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा, तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मो बिरहिन नैन के आगे, मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं फिर भी तू अभिमान कर रहा है, और क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की। तू बरसे रुत पावस आए, तू तो तभी बरसता है जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वियोग की का साहित्य है और उसमें कितना कितनी सुंदर उलाहना दी है बादल को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो।
0: जी, आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में
1: जी,
0: तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल, मतलब
1: जी, गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आप को हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है।

0: अब दूसरी बंदिश के बारे में।
1: जी, ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है, और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं, बदरिया आई रे, गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी से जरिया। के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसका उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए, ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे, गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंके जागी सेजरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर, बूंद झमाझम की शोर, राम रंग अटा झरे, भीगी अमोल चुनरिया।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संग।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल श्रोताओं, महाकाल वंदन के इस अध्याय में आइए प्रातः वंदन करते हैं कालों के काल महाकाल का। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे उज्जैन स्थित दक्षिणामुखी स्वयंभू बाबा महाकाल को नमन करते हैं। आकाशे तारकलिंगे पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमस्तुते।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। दोपहर 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल विविध भारती मुंबई से। दोपहर 1:00 सुनिए विविध भारती की गीत माला। दोपहर 2:00 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे विविध भारती मुंबई से। दोपहर 3:00 सुनिए सखी सहेली विविध भारती मुंबई से। और शाम 4:00 सुनिए हेलो फरमाइश विविध भारती मुंबई से। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:00 सुनिए युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 होगी भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। व शाम 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज।

रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, रात 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 10:00 सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम राग रजनी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और रात 11:10 से सुनिए एफएम गोल्ड के कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये था हमारा आज का कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सांदीपनी विद्यालयों में बनेंगे खेल परिसर। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण, मंत्रिमंडल समूह ने दिया आश्वासन। और प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल स्थित नाथूखेड़ा बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: वाकई लग रहा है कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य देश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में जन सामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान देशभक्ति से

0: शोध शासकीय कार्यक्रम चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा एंथम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अयोग्य घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर विधानसभा सीट जीत ली है। भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30000 से अधिक वोटों से हराया। वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 3,34,454 छात्राएं और 1,95,030 छात्र हैं। इस प्रकार कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में लगभग 2/3 भागीदारी छात्राओं की रही है। प्रवेश आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का प्रवेश आधारित जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 दर्ज किया गया है, यानी प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। यह आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सामाजिक विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगतिशील सोच का सशक्त प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ये सिद्ध करती है कि प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र पुलिस मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे कल नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। श्री सिंह ने कहा,
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल समूह ने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कल भोपाल में की गई बैठक में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। बैठक में बस को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन उड़ीसा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेचिस पर भी सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन आज खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार की लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत 15.9 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्सा जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 20% कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और मिजल्स की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों ने 3 दिवसीय निरीक्षण किया। आगरमालवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम में ई विकास पोर्टल को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कल कलेक्टर कार्यालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर के जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जुलाई 2026 के दौरान आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन में जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले में आगामी 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इंदौर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात श्रोताओं, जय श्री महाकाल। दोस्तों, विजय उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी हार मत मानिए, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए डटे रहिए। इसी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आइए शुरुआत करते हैं सुप्रभात उज्जैन के इस अध्याय की। आज की इस ऊर्जा भरी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी आवाज, आपकी रेडियो साथी प्रीति, और आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। उम्मीद है आपकी सुबह खुशियों, अच्छे स्वास्थ्य और नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई होगी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने शहर उज्जैन की, जहां आस्था भी है, विकास भी है और आगे बढ़ने का जज्बा भी। आज के कार्यक्रम के प्रमुख विषय है महाकाल मंदिर में श्रावण की विशेष व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, बदलता उज्जैन, स्मार्ट सिटी, नए विकास कार्य और शहर का बदलता स्वरूप। इसके साथ ही आप सुनेंगे उज्जैन की गतिविधियां समाचार पत्र में। इसके बाद विक्रम उद्योग नगरी, स्थानीय स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल की बढ़ती पहचान, अगस्त महीने के सांस्कृतिक, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां, इसके साथ ही किसानों और यात्रियों के लिए बारिश के मौसम में होंगी काम की बातें। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन और अब बारी है समाचार पत्र की। तो हमारी पहली न्यूज है, श्री महाकालेश्वर मंदिर की पहली सवारी में 8.21 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रावण मास की पहली सवारी में इस वर्ष रिकॉर्ड 8,21,000 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 2.5 लाख अधिक श्रद्धालु सवारी में शामिल हुए। महाकाल की पालकी पारंपरिक मार्गों से निकाली गई, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सवारी के दौरान सुरक्षा और यातायात विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रावण के पहले सोमवार को महाकाल मंदिर में 6,13,849 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। भस्म आरती से लेकर रात्रि तक मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ बनी रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रिवेणी शनि मंदिर से आज निकलेगी समर्पण कांवड़ यात्रा। उज्जैन के त्रिवेणी शनि मंदिर से आज समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के स्वागत के लिए शहर में लगभग 5,000 भगवा ध्वज लगाए गए हैं। मार्ग पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई सामाजिक संस्थाओं ने विशेष तैयारियां की हैं। कांवड़ यात्रा विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेगी। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की व्यापक व्यवस्था की है। अगली खबर है, दत्त अखाड़ा घाट पर 1100 बड़े बड़ों का वैदिक उद्घोष, 150 जगह बनी रंगोली। श्रावण माह में तैयारियों के तहत दत्त अखाड़ा घाट पर 1100 बड़ों का वैदिक उद्घोधन आयोजित किया गया। नगर भ्रमण के दौरान 125 स्थानों पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। भजन मंडलियों और सामाजिक संगठनों ने धार्मिक वातावरण को और भी भव्य बनाया। श्रद्धालुओं ने अब बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेकर उत्साह दिखाया। पूरे आयोजन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। अगली खबर है, सेवा से सेवानिवृत्त धवन का स्वागत। जी हां, उज्जैन के सुनील धवन भारतीय सेना में 22 वर्षों तक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। गृहनगर लौटने पर उनका परिजनों, मित्रों और नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फूल मालाओं और सम्मान समारोह के साथ उनके योगदान को सराहा गया। धवन ने देश सेवा के अनुभव को साझा करते हुए युवाओं को सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया। क्षेत्रवासियों ने उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार गांव में सुनेंगे उनकी समस्याएं। ग्रामीणों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान अगले वर्ष 8 जनवरी तक प्रत्येक शुक्रवार संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी हर सप्ताह किसी एक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे। अधिकारी ग्रामीणों की शिकायतें सुनेंगे, उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को मजबूत करना और लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। उज्जैन सेवा समर्पण समिति की ओर से मंगलवार को समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव के संरक्षण में निकलने वाली यह यात्रा इस वर्ष स्वर्गीय ओम अमरनाथ खत्री को समर्पित है। यात्रा के स्वागत की तैयारियों के तहत शहर में 5,000 भगवा ध्वज लगाए गए हैं और त्रिवेणी क्षेत्र में व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं।
श्रावण की पहली सवारी मन महेश के रूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले महाकालेश्वर, नौ भजन मंडलियों ने की शिव स्तुति। वैदिक उद्घोष के साथ महाकालेश्वर की आराधना। महाकालेश्वर की छह सवारियों में अलग अलग थीम रखी गई है। पहले सोमवार को निकाली गई सवारी में शिप्रा तट पर दोनों ओर दत्त अखाड़ा क्षेत्र और रामघाट क्षेत्र में 1100 बटुकों ने वैदिक उद्घोष किए। दत्त अखाड़ा पर 1100 बटुकों का वैदिक उद्घोष, 125 जगह बनाई गई रंगोली। श्रावण की पहली सवारी एकदम भव्य दृश्य था। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में किया गया आकर्षण चंद्र श्रृंगार। पटनी बाजार स्थित 84 महादेव में से 61वें सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार को भगवान का चंदन श्रृंगार किया गया। पंडित पुजारी प्रवीण पांड्या और राजेश पांड्या ने बताया कि सुबह भगवान का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया गया और शाम को आकर्षण श्रृंगार। तो ये थी हमारे उज्जैन शहर की पावन खबरें। अब बारी है एक और खूबसूरत गीत की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं बदलता उज्जैन बढ़ता उज्जैन पर। दोस्तों, उज्जैन आज सिर्फ धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि विकास की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर में सड़कों की सुधार, बेहतर लाइटिंग, सार्वजनिक सुविधाओं और साफ सफाई पर लगातार काम किया जा रहा है। शहर को और भी व्यवस्थित बनाने के लिए कई विकास कार्य अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। इसका फायदा सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मिलता है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम शहर को साफ रखें, स्वच्छ रखें और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें और एक जिम्मेदारी नागरिक होने का फर्ज निभाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी उज्जैन की जनता ये जरूर करेगी। हर छोटे बड़े आयोजन में अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी देना है, अपने शहर नदियों को साफ रखना है। आइए इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन के उद्योग, स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल के बारे में। दोस्तों, उज्जैन अब उद्योग और नए कारोबार की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। स्थानीय युवाओं के बीच स्टार्टअप शुरू करने का उत्साह बढ़ रहा है और कई छोटे उद्यम अपने उत्पादों को नई पहचान दिला रहे हैं। हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद और स्थानीय व्यवसाय आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब भी मौका मिले, अपने शहर में बने उत्पादों को प्राथमिकता जरूर दें। इससे स्थानीय व्यापार मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। आगे चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
2: आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगस्त की गतिविधियां, पर्यटन और व्यापार के बारे में। अगस्त का महीना उज्जैन के लिए हमेशा खास रहता है। श्रावण की धार्मिक रौनक के साथ साथ शहर के बाजारों में भी अच्छी पहल चहल पहल देखने को मिलती है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहारों को लेकर दुकान में नई सजावट, स्थानीय उत्पाद और उपहारों की अच्छी मांग रहती है। इस दौरान उज्जैन आने वाले पर्यटक भी शहर की संस्कृति, मंदिरों और स्थानीय बाजारों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप खरीदारी करें तो कोशिश करें कि स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों से सामान जरूर खरीदें। इससे स्थानीय कारोबार को भी मजबूती मिलती है। अभी वक्त हो चला है एक और प्यारे से गाने का, तो आइए सुनते हैं।

दोस्तों, हमारा अगला सेगमेंट है किसान और यात्री विशेष। बारिश का मौसम किसानों के लिए उम्मीद लेकर आता है। इस समय खेतों में पानी की निकासी, फसलों का नियमित निगरानी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाइयों और उर्वरकों का उपयोग करना बेहतर रहता है। वहीं अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो मौसम की जानकारी लेकर ही घर से निकलें। जरूरी सामान साथ रखें, वाहन की जांच कर लें और बारिश में सावधानी से वाहन चलाएं। थोड़ी सी सतर्कता आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। आइए चलते चलते सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

तो दोस्तों, आज के सुप्रभात उज्जैन में हमने बात की श्रावण में महाकाल की, विशेष व्यवस्थाओं की, बदलते उज्जैन की, उद्योग और स्टार्टअप की, अगस्त महीने की गतिविधियों, किसानों और यात्रियों के लिए उपयोगी सुझाव, इसी के साथ हमने सुनी उज्जैन की खबरें। इसी शुभकामना के साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रीति, लेती हूं आपसे अनुमति। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियां और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों

0: जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेज मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलोजी फ्रॉम सीईओ मार्क जुकरबर्ग। NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon the outcomes of the first BRICS Anti-Corruption Working Group meeting held virtually in June. More from our correspondent.
4: The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. During the meeting, BRICS members will deliberate on strengthening international cooperation for asset recovery, combating cross-border corruption, corruption, enhancing transparency and accountability in governance with Rishu Jess

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है उज्जैनी आरजे में और मैं हूं आपकी अपनी आवाज, आपकी आरजे प्रीति। दोस्तों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी आवाज से होती है। एक ऐसी ही आवाज जो हमें मुस्कुराना सिखाती है, कभी प्यार का एहसास कराती है तो कभी जिंदगी के दर्द को भी गीतों में ढाल देती है। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के ऐसे ही महान कलाकार किशोर कुमार को। आज उनके जन्मदिन पर सुरों के जादूगर किशोर कुमार को हम करेंगे याद। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे किशोर कुमार ने संगीत की दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी उतनी ही ताजा है। उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी की पहली पसंद है। अगले एक घंटे में हम जानेंगे उनके जीवन की कुछ दिलचस्प बातें, उनके फिल्मी सफर के यादगार पड़ाव और सुनेंगे उनके सुपरहिट सदाबहार गीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की किशोरदा के सुपरहिट सॉन्ग के साथ।

आकाशवाणी उज्जैन पर किशोर कुमार स्पेशल उज्जैनी आरजे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं खंडवा से कैसे शुरू हुआ सुरों का सफर। दोस्तों, किशोर कुमार का असली नाम है आभास कुमार गांगुली। उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हुआ। बचपन से ही वे बेहद चंचल और मस्तमला स्वभाव के थे। घर में संगीत का माहौल था और बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्मों में थे। यही माहौल उन्हें मुंबई ले आया। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खंडवा का यह लड़का एक दिन भारतीय संगीत का सबसे चमकता सितारा बनेगा। आइए इसी चमक को महसूस करते हैं किशोरदा के अगले गीत के साथ।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: दोस्तों अब जानते हैं किशोर कुमार के संघर्ष के दिन कैसे थे। मुंबई आने के बाद सफलता उन्हें तुरंत नहीं मिली। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे अभिनय के रोल किए। कई बार उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोगों ने उनकी अलग आवाज को पहचाना, उसे सराहा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे किसी की नकल नहीं करते थे, बल्कि अपनी अलग शैली में गाते थे। यही योग्यता उन्हें सबसे अनोखा गायक बनाती है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की अनोखी आवाज में ये मस्ती भरा गीत।
8: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा

आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं किशोर कुमार जन्मदिन विशेष उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, अब जानते हैं कि किशोरदा की आवाज कैसे बनी सुपरस्टारों की पहचान। समय के साथ किशोर कुमार की आवाज कई बड़े सितारों की पहचान बन गई, खासकर राजेश खन्ना और बाद में अमिताभ बच्चन। पर उनकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आई। ऐसा लगता था जैसे गीत नहीं बल्कि अभिनेता खुद गा रहे हों। यही कला उन्हें दूसरे गायकों से अलग बनाती थी। सुरों के इस सफर में आइए सुनते हैं किशोरदा का गाया हुआ एक और सुरीला गीत।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई, जरा देख के चल।

आकाशवाणी उज्जैन पर किशोर कुमार स्पेशल उज्जैनी आरजे में आपका फिर से स्वागत है। हर एहसास की आवाज किशोरदा की आवाज, हर इमोशन हर भाव की आवाज किशोरदा की आवाज। दोस्तों, चाहे रोमांटिक गीत हो, मस्ती भरा गाना हो, या दर्द से भरा नगमा हो, या जीवन को प्रेरित करने वाला कोई गीत, किशोर कुमार हर अंदाज में कमाल कर देते थे। उनकी गायकी में तकनीक से ज्यादा भावनाएं सुनाई देती थीं। शायद यही वजह है कि आज भी उनके गाने सुनते ही पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। आइए हम भी उन्हीं यादों को तरोताजा करते हैं इस गीत के साथ।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन और आप सुन रहे हैं किशोर कुमार स्पेशल उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। किशोर कुमार सिर्फ गायक नहीं बल्कि शानदार अभिनेता भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार सिर्फ बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि शानदार अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और संगीतकार भी थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की थी, उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई और दर्शकों को खूब हंसाया अपनी अलग अलग आवाजों से। उनका अभिनय बिल्कुल उनकी गायकी की तरह स्वाभाविक और दिल से जुड़ा हुआ लगता था। तो आइए इसे महसूस करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: दोस्तों अब जानते हैं किशोर कुमार को मिले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। दोस्तों जब कोई कलाकार दिल से गाता है तो सबसे बड़ा सम्मान उसे श्रोताओं का प्यार मिलता है। किशोर कुमार को लंबे करियर में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। यह उपलब्धि उनकी मेहनत और प्रतिभा का प्रणाम है, प्रतिभा का प्रमाण है। दिलचस्प बात यह है कि वे पुरस्कारों से ज़्यादा अपने काम और संगीत को महत्व देते थे। उनके लिए ये पुरस्कार सबसे बड़ी खुशी नहीं बल्कि लोग उन्हें गीतों को सुने, गुनगुनाए और उनसे जुड़ाव महसूस करें यही था। यही कारण है कि आज भी उनकी लोकप्रियता सबसे पहले जैसी बनी हुई है। आइए किशोर दा के इस लोकप्रिय गीत के साथ सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार स्पेशल उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ आकाशवाणी उज्जैन पर। दोस्तों आइए अब जानते हैं किशोरदा के मस्तमौला अंदाज और उससे जुड़े दिलचस्प किस्से। दोस्तों किशोर कुमार का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे जितने गंभीरता से अपने काम को करते थे उतना ही हसमुख उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था। फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई मजेदार किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वे रिकॉर्डिंग के दौरान भी अपने मजाकिया अंदाज से पूरे माहौल को हल्का फुल्का बना देते थे। वहीं जब माइक के सामने खड़े होते थे तो पूरी तन्मयता से गाते थे। उनके गीतों में जो स्वाभाविक खुशी सुनाई देती है उसके पीछे उनका यही जीवंत व्यक्तित्व था। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को उन्हीं के अंदाज में।

0: चुची चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: तो दोस्तों, राजेश खन्ना और किशोर कुमार की यादगार जोड़ी किसे याद नहीं है। हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थी राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ये शाम मस्तानी और कोरा कागज था ये मन मेरा, जैसे कई गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। जब पर्दे पर राजेश खन्ना दिखाई देते थे और पीछे से किशोर कुमार की आवाज सुनाई देती थी, तो दर्शक उस जादू में खो जाते थे। यही वजह है कि यह जोड़ी आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में याद की जाती है। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत किशोर दा के अनोखे अंदाज में।

आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं किशोर कुमार जन्मदिन विशेष उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, किशोरदा की आवाज हर दौर के लिए सदाबहार आवाज थी। समय बदलता गया, नए गायक आते गए, लेकिन किशोर कुमार की आवाज की चमक कभी कम नहीं हुई। उनके गीत आज भी रेडियो, म्यूजिक एप्स और स्टेज कार्यक्रमों में उतने ही पसंद किए जाते हैं। नई पीढ़ी भी उनके गानों को सुनती है और सोशल मीडिया पर उनके गानों के नए संस्करण बनते रहते हैं। यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसकी कला समय की सीमाओं से आगे निकल जाए। इसी के साथ उन्होंने गाए हैं कई गायिकाओं के साथ अनगिनत सुपरहिट सॉन्ग, जैसे लता जी, आशा जी, इनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने गाए हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं नगमों में से एक नगमा।

तो दोस्तों, किशोरदा का नाम संगीत की दुनिया में हमेशा सम्मान और प्यार के साथ लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के उज्जैनी आरजे के सुरों के जादूगर किशोर कुमार विशेष जन्मदिन स्पेशल उज्जैनी आरजे में बस इतना ही। उम्मीद है किशोरदा के जीवन और उनके सदाबहार गीतों का सफर आपको पसंद आया होगा। दिस इज आरजे प्रीति साइनिंग ऑफ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना दोस्तों? अगर नहीं आ रही है तो अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सफर बॉलीवुड बीट्स का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। अगले कुछ मिनटों में आप सुनेंगे बॉलीवुड के ऐसे गाने जिन्होंने अपने म्यूजिक, लिरिक्स और मेलोडी से लाखों दिलों में जगह बनाई है। हर गाने के साथ जानेंगे उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें, तो वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए और म्यूजिक का मजा लीजिए हमारे पहले गीत के साथ, जो कि है कॉकटेल 2 से, जिसे गाया है कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे ट्रैक के साथ जो अपनी फ्रेश फील और कैची बीट की वजह से युवाओं में खूब पसंद आया। कविता सेठ की दमदार आवाज और नीरज श्रीधर का अलग अंदाज इस गाने को और भी खास बना देता है। अगर आपका भी मूड थोड़ा मस्ती वाला है तो ये गाना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

तो दोस्तों इस बेहतरीन गाने के बाद अब बारी है हमारे अगले गाने की, जो कि है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, जिसे गाया है मीत राज ने। ये गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया था। इसकी सॉफ्ट मेलोडी और रोमांटिक वाइब्स ने इसे युवाओं की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया। खास बात यह है कि मीत राज का इंडी म्यूजिक स्टाइल इस फिल्मी गाने में साफ झलकता है। तो लीजिए सुनते हैं अखियां गुलाब।

तो दोस्तों आइए सुनते हैं हमारा अगला गाना, जो कि है फिल्म अंधाधुन से, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने। फिल्म अंधाधुन जितनी सस्पेंस से भरपूर थी, उसका म्यूजिक भी उतना ही शानदार रहा। नैना का क्या कसूर अपनी सादगी, खूबसूरत धुन और अमित त्रिवेदी की आवाज के कारण आज भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। तो आइए हम भी इसे शामिल करते हैं अपनी प्लेलिस्ट में।

तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए पंजाबी बीट पर थिरकने के लिए। जी हाँ, हमारा अगला ट्रैक है फिल्म गुड न्यूज से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, सुखबीर और ध्वनि भानुशाली ने। अब बारी है एनर्जी बढ़ाने की। ये गाना पूरे पुराने पंजाबी सुपरहिट सौदा खरा खरा का नया वर्जन है, जिसे फिल्म गुड न्यूज के लिए नए अंदाज में पेश किया गया। शादी पार्टी और डांस फ्लोर पर आज भी इसकी धूम रहती है। तो तैयार हो जाइए थिरकने के लिए इस ट्रैक पर।

तो दोस्तों अब मूड को थोड़ा करते हैं स्विच और सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से। स्टीफन बैंड की रूहानी आवाज में ये सॉन्ग जो सीधे दिल में उतर जाता है। आइए सुनते हैं आज जाने की जिद ना करो।

तो दोस्तों आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म रांझणा से जसविंदर सिंह और शिराज उत्पल की दमदार आवाज में। एआर रहमान के संगीत से सजी इस फिल्म का टाइटल ट्रैक आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। बनारस की खूबसूरत लोकेशन और इमोशनल कहानी के साथ ये गाना फिल्म की पहचान बन गया। तो आइए हम भी सुनते हैं।

दोस्तों आप सुनते हैं एक चार्ट बस्टर रोमांटिक ट्रैक जो कि है फिल्म जवान से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने अपनी रूहानी आवाज में।

तो दोस्तों, आज के बॉलीवुड बीट्स के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है इन गानों ने आपके दिन को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे नए गानों, नई कहानी और नए म्यूजिकल सफर के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 10 बजे हैं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और मैं हूं आपकी अपनी आवाज, आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां बसते हैं वही गीत जो आप सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके ढेर सारे खत, संदेश और प्यार हमें मिलता रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद के गीत आप तक जरूर पहुंचे। तो आप भी अपनी फरमाइशें, अपने विचार, अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, उज्जैन, 456010 पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की पहली फरमाइश के साथ, जो कि आई है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, जिसे भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा, काजल, मानवी और तन्वी ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मुंजिया से ये सुपरहिट गीत। तो आइए हम भी सुनते हैं।

आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है कृष्णा पाक दिल्ली से, जिसे भेजी है सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म तीन देवियां से ये खूबसूरत गीत, तो आइए हम भी सुनते हैं।

तो दोस्तों आपको याद दिला देते हैं कि आप भी अपनी फरमाइशें, अपने विचार, अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, उज्जैन, 456010 पर। आपका खत ही आपके पसंदीदा गीत को यहाँ तक लाता है, तो खत जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से, जिसे भेजा है अशोक सिंह और सुनीता सिंह ने। इसके साथ ही कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय, हैप्पी राय सुनना चाहते हैं ये गीत, तो आइए हम भी सुनते हैं।

तो दोस्तों, कार्यक्रम को और भी फरमाइशी बनाते हैं हमारी अगली फरमाइश के साथ, जो कि आई है खेल बाजार पानीपत से, जिसे भेजा है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा ने। इसके साथ ही दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय भी सुनना चाहते हैं रहना है तेरे दिल में फिल्म का ये शानदार सॉन्ग। तो आइए उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, जिंदगी भी एक गीत की तरह है, कभी सुर ऊंचे तो कभी धीमे, लेकिन अगर दिल से जिया जाए तो हर पल मधुर हो जाता है। संगीत वो जादू है जो बिना बोले भी दिल की बात कह देता है, और यही वजह है कि आपका ये कार्यक्रम, आपकी फरमाइश हम सबको जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है रघुवीर नगर दिल्ली से, जिसे भेजी है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने। ये सुनने चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म से ये गीत, तो आइए करते हैं इनकी फरमाइश पूरी।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। अब अगली फरमाइश आई है दतरंगी भाटपरा छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने। ये सुनना चाहते हैं ड्रीम गर्ल का ये सॉन्ग। तो आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

तो दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप भी अपने संदेश, अपने विचार, अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, उज्जैन, 456010 पर। तो हमें लिखिए, हमें है आपकी चिट्ठी का इंतजार। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, जिसे लिखा है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, तेजेक बीरक और मीरा बीरक ने। ये सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गीत, मैंने प्यार किया फिल्म से। तो करिए आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।

दोस्तों, कई खत ऐसे भी आते हैं जिनमें लोग अपने अपनों के लिए गीत भेजते हैं। कभी माँ के लिए, कभी जीवन साथी के लिए, कभी दूर बैठे किसी खास के लिए, क्योंकि संगीत दूरियों को भी पास ले आता है। तो आप भी हमें खत लिखना मत भूलना। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है मोर टक्का माफी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, जिसे भेजा है किसान श्रोताओं ने। जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल ने। आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है बागपत उत्तर प्रदेश से, जिसे भेजा है संजय डींगिया और नमन डींगिया और अपार डींगिया ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दाग से ये बेहतरीन गीत, तो आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।
1: आज क्या है

दोस्तों, आपके खत इस कार्यक्रम की जान है। आपका प्यार, आपकी लिखावट, आपके जज्बात सब यहाँ महसूस होते हैं। तो आप हमें खत जरूर लिखें और अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाइए। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, उज्जैन, 456010। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि आई है आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से, जिसे भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहाने। तो चलिए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन संगीत का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। अगर आपका खत आज शामिल नहीं हो पाया तो चिंता ना करें, अगली कड़ी में जरूर कोशिश होगी। तो दोस्तों, आप भी अपने संदेश, अपने विचार, अपनी फरमाइशें हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है आकाशवाणी केंद्र, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन, 456010 पर। चलिए लेते हैं अगली फरमाइश, जो कि आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, जिसे भेजा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी का ये प्यारा सा गीत, तो आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं।

तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जिसे भेजा है पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा, अनमोल जुनेजा और साहिबा गुप्ता ने। तो आइए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, आज के फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश में बस इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। मैं आपकी रेडियो साथी प्रीति ले रही हूँ आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे नए खतों, नई फरमाइशों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में अगले कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारती मुंबई से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

रंग तिरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कलाम मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह,

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजें।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये नगमा आपने सुना। विविध भारती आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है रंग तरंग। सुबह की 11:14 हो चुके हैं। विविध भारती पर भूपेंद्र सिंह की आवाज गूंज रही है। ये जावेद, ये गुलजार साहब का गीत।

0: पांच कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे। यादों की महफिल

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

श्रीधर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: पर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आरडी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया।

0: और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुणी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या ना करे ये प्रीत रे, कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, एक बजे मिलेंगे हम। यह है आज की इबारत, और लीजिए एक बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।

0: सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे खुदी भी सुनो पापे।
1: भाई सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

0: gigele gigele gigele gigele gigele gigele gigele gigele gigele bam bam ma kuku bam bam ma kuku bam bam ma kuku bam bam ma kuku
1: dil ha ku pagu jaan ha ku pagu jaan ha ku pagu dil ha ku pagu ram ram siya ram salam walaikum pyar karo chup chup chup priyo chup chup chan chan kut kut kut kut kut kut chan chan kut kut how do you do bam cheek cheek cham cheek cheek bam cheek cheek cham cheek cheek bam chuk bub chuk bam chuk bub chuk bam chuk bub chuk bam chuk bub chuk bad ke bol beta bam bam
2: भाई बड़के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी कुड़िये ये पुत्र देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, ए देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
2: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
0: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा, चल बेटा, बम बम बम बम चीक चीक चाम चीक चीक बम।
2: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
3: गौरी जरा बती यासु नौजी मोरी मोरी।
2: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
3: चोरी चोरी चोरी।
2: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
3: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे, धिने ता ता ता।
4: गे गे गे लीदरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गलेबू, मैं हूँ लोहा चुम्ब।

0: दीवाना, पलक न गिराना, तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा।
1: मैं हुलोहा, मैं हुलोहा, मैं हुलोहा, मैं हुलोहा, तुम भक्तों, ऐसे भला बच्चे बच्चे रहो,
0: गे गे गे

क्या आपको यह अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गेगे गेगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन

0: से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अभी गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: सुनो सुनो

जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: किथे जाने मेन साहब
1: गल कॉलेज
0: टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची सुन लिया लेक्चर राधा पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा खिसक के पहुंची रेस्टोरां जान में आई जो
1: हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो
2: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
1: हाय
2: हाय हाय हनी मैं तो बोर हो गया
1: really?

कप कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे।

0: एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते। कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग।
1: बलमा हाय और ये भी हक्का,
0: यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का बक्का।
1: और ये भी हक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
0: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।

चूमे। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, ओ सोनिया। मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देके धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का।

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप, मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं। कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते, और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

0: पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। जाते ही झुके सलाम बजाया डैडी को, दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
2: चाय पिलाओ

0: सितार।
1: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
2: कहने लगा
3: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे।
4: उसका भाई था भक्सर भारी, उसका भाई

0: मिस खंबा
1: बम्पी बम्पी बम्पी बम्प
0: कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ दिल फेल हुआ हाय हाय रे
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू होनोलुलू।
2: कहां से पहुंचे और कहां चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे एक श्रोताओं हमारे कुछ श्रोताओओं में से किसी एक ने कहा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, ये उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूँ न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ, हाय हाय ना

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना, हाय

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंगा गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएं कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाए हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।

0: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास एक रो

चार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी है बड़ी।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोताएं जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है, वैसे तो कभी कभी पापा

के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं, और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नज़र आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

जमाना दीवाना फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है विनोद राठौर की, गीत समीर का और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इन गलियों में बच के रहना नटखट प्रेम कुमारी। इस बस्ती में रहते हैं सबके सब प्रेम पुजारी।

आइए आपको सुनवाते हैं आप आए बाहर आए फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल आनंद बख्शी के हैं, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गीता का श्लोक साझा करते हुए ज्ञान को सबसे पवित्र बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे।

0: का महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है।
1: इस कार्यशाला में देश भर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। चुनाव होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे। लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जुलाई से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 7 निर्धारित उपार्जन केंद्रों के जरिए 2118 किसानों से कुल 7022 क्विंटल से ज्यादा मूंग की खरीदी की जा चुकी है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश भर के जिलों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें रखी गई है। और शिवपुरी जिले में आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर

0: ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
5: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
6: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
7: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
9: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
2: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: लग रही हो?
2: जी
1: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
2: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
1: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूले के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
2: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
1: हाँ।
2: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
1: हाँ,
2: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
1: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
1: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
2: बिल्कुल। आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
1: संबंध खराब हो जाते हैं
2: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
2: बिल्कुल,
1: है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान के कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
2: बिल्कुल।
1: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
2: बिल्कुल
1: है।
2: बिल्कुल। उसकी आप जांचें, उसे परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
1: रखना पड़ता,
2: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
1: बिल्कुल।
2: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक से 21 होना।
1: अरे, एक से 11 होना तो हमने सुना है,
2: ये अलग है,
1: एक से 21 होना और भी बड़ी बात है।
2: बिल्कुल।
1: तो चलिए इस पर ही हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
2: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
1: देखते हैं।
2: बिल्कुल। और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
1: जो याद रह जाती
2: है। बिल्कुल, याद रह जाती है।
1: और कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब ये छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
2: बिल्कुल। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं।
1: हाँ।
2: क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखा है ना कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं, आपने क्या शरारत की, आपको याद है या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
2: बिल्कुल
1: ये आप लिख सकते हैं,
2: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
1: या आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है।
2: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात करेंगे।
1: इनके बारे में बात करेंगे, तो चलिए अब सावन
2: को एंजॉय, आनंद उठाते हैं।
1: हाँ चले करें।
2: बिल्कुल।

तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था, सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं।

0: बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की चीज़ें होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: ऐसे हादसे हो जाते हैं
1: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
0: बिल्कुल, और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
1: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
0: बिल्कुल, और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
0: बिल्कुल, और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
1: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
1: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें, और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता चिंता भी देता है, लेकिन हाँ अफवाहों से रहें सावधान। भाई सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों

0: ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं, और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए, और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई, और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में
1: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की,

0: सैन्य परिवार में थी वो। पली बड़ी मलिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी।
1: जी, और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो MBA करने मुंबई चली गई और MBA करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था।
1: जी, और क्योंकि लंदन से आने वाले को दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: जी, और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद में हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल, और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मलिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है, और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती। इतना मुश्किल काम था और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो आरती तुम चौंक गई ना।
1: हाँ। क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
0: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते और अब सुनते हैं गीत।
1: जी,

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है। तो और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखती है कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई, पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा तुम उनकी चरपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कैसे कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं ना। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई, एक जो मेरी गलती नहीं थी एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वो ये दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई, नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, 1 रुपए का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है, तो
1: ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं।
0: हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे, सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे, हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए, अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया, चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं, मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारते
0: तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
1: हमारे यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक आध
0: सिर्फ लेके जाओ और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
1: कि हमें नहीं लेके जा
0: रहा, हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया, हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे, वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी
0: पड़ी होगी
1: जी। अच्छा मजाक नहीं, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे, देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक छोटा लिखते हैं कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
4: बिल्कुल,
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
3: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
4: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
3: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
3: बिल्कुल।
4: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
3: हाँ,
4: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
4: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
4: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
3: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है, एक और एक 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन एक 21 होने वाली जो बात है, एक से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब दो चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
4: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि एक से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक और एक 11 या फिर 9-2-11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और एक और एक 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि एक और एक मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो एक से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये। हाँ। पुराना ही मुहावरा है। हाँ, लेकिन हमने सुना कम है। हाँ, ये प्रयोग कम होता है,
3: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई एक और एक 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9-2-11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? एक से 21 होना
4: जैसे
3: तो मतलब
4: एक है, एक से सीधे हम उछल के 21 से पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
3: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि एक का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना। व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
4: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
3: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहां संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वहीं 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
4: जी बिल्कुल। और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी है हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
3: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
4: जी, बात तो सही कही आपने।
3: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोता, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, 1 से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
4: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे।

0: और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं।
0: बाकी बहुत आज मन खुश
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है। इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत में बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले। तो
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
0: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
0: जी,
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ, क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी
0: जी, जी।
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया।
0: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट, मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को, मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
1: बिल्कुल कि
0: वो युवा
1: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए
0: जी,
1: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है,
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में, मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब CBSE के पढ़े हैं, और ये नवंबर, दिसंबर, जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया, कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बंबई जब आई, मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं।
0: क्या बात है। बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूँ कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने हाँ. दिखा है तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है. आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
1: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से. तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां. तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस. और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था तो वो, इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी. तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया. और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी. और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ. तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं.
0: क्या बात है, क्या बात है. देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है. और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं.
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया. सुनते हैं.
0: क्या बात है, ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी. सुनते हैं ये गाना. जी.

0: एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
1: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक
0: जी
1: सिखाने वाले, वाह।
0: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में
1: बिल्कुल
0: जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी
1: बिल्कुल
0: थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना।
1: मजेदार है ये।
0: हाँ, बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो सी दैट,
1: ये
0: उस
1: डीप
0: समय
1: बात है, बिल्कुल
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आपका क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैंप रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं कि जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद
0: बिल्कुल।
1: है?
0: तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में,
1: जरूर
0: हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: बाबा, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेज नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे कहा था, मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा,
0: ये तो बहुत महत्व,
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह। तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी
1: जी तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन की, कि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट था, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह।
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशन में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी

0: एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे,
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे थे
0: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे
1: तो वो सीधी राह पर चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, हाँ, क्या बात है। हाँ,
0: वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है। बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेत्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी और मतलब। लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर दो साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए,
1: क्योंकि
0: पापा, हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और हाँ, उनके काउंसलर से मिली
1: हाँ,
0: तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए, कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
1: राइट।
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई, अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं।
1: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
1: और ये बन गई,
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है, तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
0: एक है। चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में, मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात कर।
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था. उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे.
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था.
1: क्या बात है, क्या बात है. और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते.
0: जा हार ता हबे.
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है. यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए. अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो आप, एक सजेशन करता
0: आप, हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे.
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं,
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है, और फिर वो फिल्म आलाप में आती है.
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं. ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
0: शंकर जी को.
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा.

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई जस्ट सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया.
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी. और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी. वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
0: बिल्कुल.
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो. डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे. पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई. एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में. अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी.
0: जी जी.
1: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे.
0: वाह वाह.
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी.
0: बिल्कुल.
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है. शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल दिक्कतें आई. जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई. क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
0: इससे पहले. बना चुकी
1: इससे पहले. हाँ. और
0: नवाज थे उसमें?
1: नवाज था उसमें. और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी. उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से. हाँ. तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
0: क्या हुआ था आपके साथ रोम में?
1: सुपर नेचुरल स्टोरी थी.
0: सुपर नेचुरल.
1: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस. खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी.
0: Right.
1: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब. बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता. मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है. सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा इंसर्ट किया।
0: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
1: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
0: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
1: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया।

0: सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर. मतलब 2-3 फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम.
1: अभी
0: पता नहीं. उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैटाटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने. और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया. वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला. फिर
1: बाबा
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला. केरला, मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की. अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने US प्रीमियर की उस फिल्म की.
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना.
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी है, आपने बताया,
0: हाँ.
1: बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने, इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी. पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था. मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में. पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया. मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज की तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है.
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे. मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था. पर अब वो नहीं है, क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है.
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ. आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको. और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें. क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट. और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है. लेकिन जो गेट कीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं.
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल.
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम,

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
0: गाना,
1: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो,
1: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ये ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो I had to sing for that film.
0: You have to sing.
1: Okay. আমি লাশময়ে তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু

0: तो मानोई।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में

FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं और ये समय है युवा श्रोताओं के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से सुन रहे हैं आप आपका अपना प्रिय कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रचना।
1: और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजवीर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप इस मानसून के वेदर का मजा ले रहे होंगे। बारिश की ये हल्की हल्की फुहारें और चारों तरफ बिखरी हरियाली, ऐसे मौसम में तो चाय की चुस्की के साथ बातें करने का मजा ही कुछ और होता है।
0: सही कहा राजवीर, और मानसून की इसी खूबसूरत वाइब के साथ आज हम सजा कर लाए हैं यादों, नगमों और इतिहास के हसीन पन्नों का एक बेहद सुहाना कारवां। आज के शो में दिल को छू लेने वाली बातें होंगी, वक्त के गलियारों में छुपी कुछ खास कहानियों से पर्दा उठेगा और साथ ही घुलेंगी आपकी पसंद के सुरीले गानों की मिठास, यानी गॉसिप्स, इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स और म्यूजिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन सजने वाला है।
1: तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज 4 अगस्त की तारीख कई मायनों में बहुत खास है। आज हम किन किन मेन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, आइए आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड लेपर्ड दिवस, इस रेयर वाइल्ड लाइफ क्रिएचर के प्रोटेक्शन और घटती पॉपुलेशन के प्रति अवेयरनेस। किशोर कुमार जयंती, हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी और बहुमुखी सिंगर किशोरदा की बर्थ एनिवर्सरी भी आज है। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, 4 अगस्त को मुंबई स्थित बार्क में भारत के पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के शुरू होने का हिस्टोरिकल मोमेंट। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत, माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना को समर्पित पावन त्योहार।
0: तो दोस्तों, हिस्ट्री, म्यूजिक, साइंस और फैक्ट्स से जुड़ी ये खट्टी मीठी बातें शुरू करें, उससे पहले आइए सुनते हैं मानसून के सुहाने मौसम में एक बहुत ही प्यारा और रिफ्रेशिंग सॉन्ग।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म तनु वेट्स मनु का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था लेम्बर हुसैन पुरी ने, जिसके संगीतकार थे कृष्णा सोलो और गीतकार थे राज शेखर। दोस्तों अब बात करते हैं आज के दिन के एक बहुत ही खास और रोचक विषय के बारे में। हर साल 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। और रचना बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये क्लाउडेड लेपर्ड आखिर होता क्या है। तो आसान शब्दों में कहें तो ये कैट फैमिली का एक बहुत ही सुंदर रहस्यमयी और शर्मीला जीव है। इसके शरीर पर बादलों जैसे खूबसूरत निशान होते हैं, इसीलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। ये दिन इसी दुर्लभ जीव को बचाने, इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है।
4: बिल्कुल सही कहा राजवीर। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यह खास तौर पर हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम के घने और ऊंचे जंगलों में पाया जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि क्लाउडेड लेपर्ड हमारे मेघालय का राजकीय पशु भी है।
8: रचना ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये शर्मीला जानवर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, इंसानी दखल और अवैध शिकार की वजह से इनके रहने का ठिकाना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर हम आंकड़ों रिपोर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया के

0: जंगलों में अब 10,000 से भी कम क्लाउडेड लेपर्ड बचे हैं।
1: इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इन्हें सुभेदय यानी खतरे की श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि अगर हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए प्रकृति ने हर जीव को किसी न किसी वजह से बनाया है। जंगल के इकोसिस्टम और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए क्लाउडेड लेपर्ड जैसे जीवों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। 4 अगस्त का ये दिन हमें यही याद दिलाता है कि हमें जंगलों को बचाना है और इन बेजुबान जीवों की रक्षा करना है।
1: बिल्कुल राजवीर, और अगर जंगल रहेंगे तभी ये जीव रहेंगे और तभी हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
0: तो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के सुंदर संदेश के साथ आइए अब रुक करते हैं आज के अगले विषय की ओर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म वीर जारा का यह बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। संगीतकार थे मदन मोहन और गीतकार थे जावेद अख्तर। रचना 4 अगस्त का दिन भारत के विज्ञान के इतिहास में भी बहुत खास माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 1956 को भारत और पूरे एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। यही वो पल था जब भारत ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में अपना पहला बड़ा कदम रखा था।
2: बिल्कुल राजवीर, और खास बात ये है कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये संदेश भी था कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्सरा रिएक्टर मुंबई के ट्रॉम्बे में बने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC में लगाया गया था।
1: और इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जब इस रिएक्टर को देखा तो इस रिएक्टर की खूबसूरती और टीम की मेहनत से खुश होकर उन्होंने इसका नाम रखा अप्सरा। बाद में 20 जनवरी 1957 को इसे देश को समर्पित कर दिया गया।
2: लेकिन दोस्तों, ये काम इतना आसान भी नहीं था। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1945 में जापान पर परमाणु हमलों के बाद पूरी दुनिया समझ गई थी कि आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा कितनी अहम होने वाली है।
1: सही कहा, लेकिन उस समय भारत लंबे संघर्षों के बाद आजाद हुआ था। ना हमारे पास ज्यादा संसाधन थे, ना आधुनिक तकनीक और ना ही बड़ा वैज्ञानिक ढांचा। फिर भी देश के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे इस दिशा में काम शुरू कर दिया।
2: इसी सोच के साथ 15 अप्रैल 1948 को सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट लागू किया और इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की असली शुरुआत हुई।
1: और तत्कालीन प्रधानमंत्री का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे पहले देश के विकास के लिए होना चाहिए, जैसे बिजली बनाने में, चिकित्सा में, खेती में और वैज्ञानिक शोध में। हाँ, अगर देश की सुरक्षा की जरूरत पड़े तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा।
2: फिर 1954 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना हुई, जिससे आज हम BARC के नाम से जानते हैं। इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE भी बनाया गया।
1: और इस पूरे सफर में सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी और भारत के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत आधार दिया।
2: डॉक्टर भाभा और JRD टाटा के प्रयासों से देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी नई ताकत मिली। TIFR और बाद में BARC जैसे संस्थान बने, जहां देश के युवा वैज्ञानिकों को शोध करने का बेहतरीन मौका मिला।
1: बिल्कुल, अब चुनौती थी पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की,
2: और देश के महान वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक साल के अंदर रिएक्टर तैयार कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और 4 अगस्त 1956 को अप्सरा सफलतापूर्वक चालू हो गया।
1: उस समय दुनिया के कई देश वर्चस्व की लड़ाई में परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में थे, लेकिन वहीं भारत ने दुनिया को बताया कि वो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल विज्ञान, रिसर्च और लोगों की भलाई के लिए करेगा।
2: अगर अप्सरा की बात करें तो ये 1 मेगावाट क्षमता वाला रिसर्च रिएक्टर था। करीब 5 दशकों तक इसने वैज्ञानिक शोध, प्रशिक्षण और कई महत्वपूर्ण प्रयोगों में बड़ी भूमिका निभाई।
1: करीब 50 साल से यहाँ देश की सेवा करने के बाद 2002 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन भारत के वैज्ञानिक इतिहास में इसकी पहचान हमेशा बनी रहेगी।
2: और अप्सरा की सफलता के बाद भारत यहीं नहीं रुका, आगे चलकर सर्कस और तारापुर जैसे दूसरे परमाणु रिएक्टर भी बने, यानी भारत लगातार वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता गया।
1: बिल्कुल, अप्सरा सिर्फ एक रिएक्टर नहीं था, बल्कि ये भारतीय वैज्ञानिकों के सपने, मेहनत और आत्मविश्वास की पहचान था। इसने आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, आज 4 अगस्त के मौके पर हम उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और दूरदर्शी लोगों को दिल से नमन करते हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। और अब इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम के अगले गीत का।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया था फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन ने। संगीतकार थे शंकर एहसान लोय। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सबसे खास और सुरीले अध्याय की, जिसका सीधा नाता हमारी अपनी माटी यानी मध्य प्रदेश से है। आज भारतीय सिनेमा के महान और बहुमुखी कलाकारों में से एक हरफन मोला कलाकार किशोर कुमार जी की जन्म जयंती है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोरदा को अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव था कि मुंबई की चकाचौंध में रहने के बावजूद उनका दिल हमेशा खंडवा के दूध जलेबी और वहां की गलियों में ही बसता था। और जब बात किशोरदा की हो तो उनके इंदौर वाले कॉलेज और 5 रुपया 12 आना की सच्ची कहानी को कैसे भूल सकते हैं।
1: बिल्कुल राजवीर, इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज का वो किस्सा वाकई बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक है। जब किशोर कुमार 1946-1948 के दौरान इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्हें कॉलेज कैंटीन से उधारी लेकर दोस्तों को समोसा चाय खिलाने का बहुत शौक था। धीरे धीरे कैंटीन वाले के उन पर 5 रुपए 12 आने उधार हो गए।
0: और मजेदार बात यह है कि जब भी कैंटीन मालिक उनसे पैसे मांगता तो किशोरदा भागने या परेशान होने के बजाय हंसते हंसते कैंटीन की बेंच पर चम्मच और गिलास बजाकर गाने लगते, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। और वही कॉलेज की उधारी की धुन आगे चलकर फिल्म चलती का नाम गाड़ी में अमर गाना बन गई। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया तो दूंगा ताना, यानी जीवन की छोटी छोटी बातें और अपनी उधारी को भी संगीत में बदल देने ही किशोरदा का असली जादू था।
1: सच में राजवीर, वे कहते थे कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो, मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए श्रोताओं, किशोरदा के जीवन की इन खूबसूरत यादों के साथ सुनते हैं उनकी जादू भरी आवाज का एक गीत।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म ब्लैक मेल का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार जी ने। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। तो दोस्तों, युववाणी में किशोरदा के जन्मदिन का ये खास सफर जारी है। रचना, आज हम किशोर कुमार को एक महान और स्थापित नायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि शुरुआत में उन्हें संगीत की कोई औपचारिक या शास्त्रीय शिक्षा ना होने के कारण काफी रिजेक्शन झेलना पड़े थे।
1: बिल्कुल राजवीर, लोग उनसे कहते थे कि बिना किसी गुरु के सीखे वे कभी बड़े गायक नहीं बन सकते। शुरुआत में किशोरदा अपने आदर्श गायक के एल सहगल साहब की शैली में गाया करते थे और उन्हीं की नकल करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब महान संगीतकार एस टी बर्मन उनके घर आए।
0: बिल्कुल सही कहा रचना, बर्मन दादा ने जब किशोर कुमार को सहगल साहब की शैली में गाते सुना तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। उन्होंने किशोरदा से एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, किशोर, तुम सहगल की नकल बहुत अच्छी करते हो, लेकिन दुनिया को दूसरे सहगल की नहीं, पहले किशोर कुमार की जरूरत है। दूसरों का साया बनना छोड़ो और अपनी खुद की आवाज ढूंढो।
1: वाह, कितनी बड़ी और गहरी सीख थी राजवीर। वो उसी दिन से किशोर कुमार ने अपनी खुद की अनोखी और ऑथेंटिक गायन शैली विकसित की।
0: उन्होंने किसी की नकल करना छोड़ दिया और पश्चिमी संगीत से प्रेरित होकर अपनी गायन शैली में योडलिंग का तड़का लगाया, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया।
1: यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौलिकता और अपनी प्रतिभा पर भरोसा करना ही सफलता की असली चाबी है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो आइए सुनाते हैं आपको किशोरदा की मखमली आवाज में एक अमर गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म मंजिल का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने और संगीतकार थे आरडी बर्मन, गीतकार थे योगेश।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन पर युववाणी में आज हम याद कर रहे हैं सुरों के बेताज बादशाह किशोर कुमार जी को। किशोर कुमार जी केवल एक गायक नहीं थे, वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गीतकार और संगीतकार भी थे। वे कितने बड़े फनकार थे, इसका सबसे प्रामाणिक और बड़ा सबूत है 1962 की फिल्म हाफ टिकट का एक बेहद मशहूर गाना।
0: रचना, क्या तुम उसी ऐतिहासिक गाने की बात कर रही हो, आके सीधे दिल पे लगी?
1: बिल्कुल राजवीर, इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक ऐसा सच है जो आज के दौर में सोच पाना भी मुश्किल है। इस गाने को प्राण साहब और किशोर कुमार दोनों पर शूट होना था। प्राण साहब जो महिला के गेटअप में थे और किशोर कुमार जी जो पुरुष के रोल में थे। तय यह हुआ था कि महिला की आवाज लता मंगेशकर जी गाएंगी और पुरुष की आवाज किशोर जी, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन किसी कारणवश लता जी स्टूडियो नहीं पहुंच पाई और संगीतकार सलील चौधरी जी काफी परेशान हो गए।
0: बिल्कुल, तब किशोरदा ने जो किया उसने पूरे भारतीय संगीत उद्योग को स्तब्ध कर दिया। किशोरदा ने सलील चौधरी जी से कहा कि वे परेशान ना हो, इस गाने में पुरुष और महिला दोनों की आवाजें वे अकेले ही गाएंगे। और रचना, सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्होंने एक ही टेक में बिना रुके अपनी पिच बदलकर पतली आवाज में महिला के हिस्से भी गाए और अपनी कड़क आवाज में पुरुष के हिस्से भी गाए। जब यह गाना रिकॉर्ड होकर पूरा हुआ तो स्टूडियो में मौजूद कोई भी इंसान यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह दोनों आवाजें किसी एक ही इंसान के गले से निकली हैं।
1: सच में राजवीर, बिना किसी डिजिटल तकनीक या ऑटो ट्यून के, केवल अपने गले के रियाज, मेहनत और लगन के दम पर ऐसा कारनामा करना केवल और केवल किशोर कुमार जी की बस की ही बात थी। तभी तो वे 8 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले इकलौते गायक बने।
0: तो दोस्तों, महान संगीतकार किशोर कुमार और उनके अनगिनत गीतों और उनकी बहुमुखी व्यक्तित्व को नमन करते हुए आइए सुनते हैं उनका एक बेहद सुरीला गाना।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। संगीतकार थे आर डी बर्मन और गीतकार थे आनंद बख्शी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदी के महान गायक किशोर कुमार जी की। भारतीय सिनेमा के उस अद्भुत कलाकार, उनकी आवाज़ आज भी दिल की धड़कन बनकर गूंजती है। एक ऐसा नाम जिसने हंसी भी दी, आंसू भी दिए और प्यार के एहसास को भी अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक किशोर कुमार की।
1: किशोर कुमार केवल एक गायक नहीं थे, वे अपने आप में एक पूरा संगीत विद्यालय थे। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि रोमांटिक गीतों में प्रेम झलकता था, दर्द भरे गीतों में संवेदनाएं बहती थी और मस्ती भरे गीतों में जीवन का उत्साह झलक उठता था।
0: सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी अपनी गायकी को किसी एक शैली तक सीमित नहीं रखा। वे हर भाव को अपनी आवाज में उसी तरह ढाल लेते थे कि श्रोता खुद को उस गीत का हिस्सा महसूस करने लगते थे। शायद यही कारण है कि उनकी आवाज समय के साथ पुरानी नहीं हुई, बल्कि हर नई पीढ़ी की पसंद बनती चली गई।
1: किशोर कुमार की प्रतिभा केवल गायन तक सीमित नहीं थी, वे अभिनेता थे, संगीतकार थे, गीतकार थे, निर्माता और निर्देशक भी थे। लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनकी सादगी, उनकी मौलिकता और संगीत के प्रति उनका टूट समर्पण।
0: आज भी जब रेडियो पर उनका कोई गीत बजता है तो लोग अनायास ही गुनगुनाने लगते हैं। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब उसकी कला पीढ़ियों को जोड़ दे और समय की सीमाओं को पार कर दे। तो दोस्तों, इसी के साथ पेश है अगला गीत।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म डॉन का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और लिरिक्स थे अनजान के।
2: राजवीर, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन हमारे किशोर कुमार जी जैसा पागलपन, पेशन, ओरिजिनलिटी किसी में नहीं थी। संगीत को लेकर उनका डेडिकेशन और परफेक्शन तो देखिए। फिल्म डॉन का यह गीत सूप खाई के पान बनारस वाला, जो श्रोताओं अभी अभी आपने सुना, इसे रिकॉर्ड करते समय उन्होंने स्टूडियो में सच में अपने मुंह में असली पान रखकर गाना गाया था, ताकि आवाज में वो एकदम रियल बनारसी टच का मजा आ सके।
1: और रचना काम को लेकर उनका अंदाज इतना अनूठा और फनी था कि लोग आज भी उनके किस्से सुनकर हैरान रह जाते हैं। एक बार जब एक प्रोड्यूसर ने उनके काम के पूरे पैसे देने की बजाय सिर्फ आधे पैसे दिए, तो किशोर कुमार सेट पर अपनी आधी मूंछ और आधा सिर शेव करवा कर पहुंच गए। जब सबने हैरान होकर पूछा कि ये क्या उतार है, तो वे हंसते हुए बोले, आधा पैसा मिला है तो आधा ही मेकअप होगा ना भाई।
2: और राजवीर, उस दौर के स्टार्स भी उनकी आवाज के इतने दीवाने थे कि उनके लिए अपनी फिल्में तक दांव पर लगा देते थे। 1974 की फिल्म खोटे सिक्के का वो सच्चा किस्सा तो याद कीजिए, जब आरडी बर्मन यानी पंचमदा के बनाए गाने के लिए किशोर कुमार बिजी होने की वजह से 3 बार डेट्स नहीं दे पाए।
1: बिल्कुल रचना, जब बिजी शेड्यूल के कारण 1 महीना बीत गया और डायरेक्टर ने तंग आकर किशोर कुमार की जगह किसी और सिंगर से गाना रिकॉर्ड करवाने का फैसला किया, तो फिल्म के लीड हीरो फिरोज खान बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने सीधे डायरेक्टर से कहा, अगर आज मेरी जगह राजेश खन्ना होते तो क्या आप किशोर कुमार को रिप्लेस करने की हिम्मत करते? अगर किशोर कुमार ये गाना नहीं गाएंगे तो मैं भी फिल्म छोड़ रहा हूँ।
2: बिल्कुल राजवीर, और जब पंचमदा ने तुरंत किशोर कुमार को फोन करके पूरी बात बताई, तो वे अगले ही दिन सुबह 8 बजे स्टूडियो पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे रिहर्सल की, 1 कप चाय पी और बिना किसी रिटेक के एक ही बार में वो आइकॉनिक गाना रिकॉर्ड कर दिया, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं।
1: साल 1987 में जब हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, तो शुरुआत में किसी को भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। सबको लगा कि किशोर कुमार हमेशा की तरह कोई प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि शांत होने से कुछ मिनट पहले तक वे अपने आसपास के सभी लोगों को जोक्स सुनाकर हंसा रहे थे।
2: सही में राजवीर, वे अक्सर कहा करते थे, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। और आज इतने सालों बाद भी उनकी आवाज़, उनकी मस्ती और उनका यह अमेजिंग अंदाज हम सब के दिलों में पूरी तरह जिंदा है। तो श्रोताओं, इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: सुना ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अलव स्टोरी से कुमार सानू कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था डी बर्मन का।
1: दोस्तों, किशोर कुमार जी की लाइफ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर उनके हंसमुख नेचर, मस्तमोला अंदाज और हिट गानों की ही बात होती है, लेकिन किशोरदा की पर्सनालिटी का एक ऐसा साइड भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी निस्वार्थ दरियादिली सादगी और गानों को रिकॉर्ड करने के पीछे उनका पैशन।
0: बिल्कुल सही कहा राजवीर, अक्सर इंडस्ट्री में यह अफवाह फैलाई जाती थी कि किशोर कुमार बिना एडवांस फीस लिए कभी माइक के सामने नहीं आते थे, लेकिन रियल हिस्ट्री इसके बिल्कुल उलट है। जब महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे अपनी हिस्टोरिकल फिल्म पथेर पांचाली बना रहे थे तो पैसों के बजट की वजह से फिल्म का काम रुक गया था। जब किशोर कुमार को यह बात पता चली तो उन्होंने न केवल उस फिल्म के लिए एक पैसा, जबकि उस फिल्म के सारे गाने उन्होंने बिना एक पैसा लिए गाए।
1: इतना ही नहीं रचना, उनके कई सुपरहिट गानों के पीछे ऐसी कई स्टोरीज हैं जो सुनकर सच में अमेजिंग लगती हैं। क्या आप जानती हैं फिल्म शराबी का बेहद फेमस गाना मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह रिकॉर्ड करते समय किशोरदा की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी थी।
0: यह बात तो वाकई बहुत कम लोग जानते हैं। फिर क्या हुआ राजवीर?
1: किशोरदा को जब पता चला कि म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी दा और पूरी टीम स्टूडियो में उनका इंतजार कर रही है तो वो डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद सीधे स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने म्यूजिशियन का टाइम और मेहनत मेरे आराम से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कहा। दोस्तों, उन्होंने इस हालत में भी इस गाने का पूरा रिकॉर्ड किया।
0: क्या बात है राजवीर, और 1971 के वार के टाइम भी जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पर डटे हुए थे तब किशोर कुमार ने बिना कोई फीस लिए सशस्त्र बल कल्याण कोष के लिए कई चैरिटी शोज किए थे। वे कभी भी अपने सोशल वर्क को शो ऑफ नहीं करते थे। वे कहते थे राइट हैंड से दी गई मदद लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपसे बात करते हुए शाम का ये वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है आपको आज का हमारा एक कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। बाहर मौसम भी बहुत सुहाना है तो बस एक कप चाय की चुस्की के साथ इस मौसम का आनंद लीजिए।
0: जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, एक नई शाम और एक नए विषय के साथ।
1: तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं राजवीर
0: और मैं रचना लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार। शाम का यह समय भी कितना अद्भुत होता है ना। दिन भर की आपाधापी, भाग दौड़ और मानसिक थकान के बाद जब ढलता हुआ सूरज आसमान में नारंगी किरणें बिखेरता है तो मन खुद ब खुद थोड़ा ठहरना चाहता है। आकाशवाणी उज्जैन के इस शाम के सुहाने पड़ाव पर मैं हूं आपका दोस्त दुर्गा शंकर सूर्यवंशी और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, संध्या का यह पावन समय केवल दिन के ढलने का समय नहीं है बल्कि यह मन के कोलाहल को शांत कर ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने का समय है। महाकाल की इस पवित्र नगरी अवंतिका में जहां हवाओं में भी हर हर महादेव की गूंज बसती है, भक्ति संगीत हमारे अंतर मन को शांति प्रदान करता है। आइए संध्या की इस पहली बेला में ज्ञान और नव प्रभाव की ऊर्जा का आह्वान करते हैं। सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में ये कालजयी भजन।

भक्ति रस से सराबोर इस सुरीले भजन के बाद भजन संध्या में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, जीवन की आपाधापी में मनुष्य बहुधा अपने सत्य मार्ग से विचलित हो जाता है। ऐसे समय में ईश्वर से मांगी गई सबसे बड़ी प्रार्थना धन या वैभव नहीं बल्कि मन की शक्ति है, ताकि हम बुराई से बच सकें, सही मार्ग पर चल सकें और दूसरों के दुख को समझ सकें। कवि श्रेष्ठ वसंत देव जी के लिखे इस अमर भजन में प्रार्थना और भक्ति का अद्भुत पराकाष्ठा स्तर है। आइए सुनते हैं यह पवित्र प्रार्थना।

आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, जब हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सांस लेते हैं तो यहाँ का हर कण शिवमय प्रतीत होता है। भगवान शिव ही आदि है, वही अनंत है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि का मूल स्पंदन है। इस पंचाक्षर मंत्र के जाप से मन के सारे भय और चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती है। आइए भगवान भूत भावन महाकाल के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं यह पावन शिवधुन।

ओम नमः शिवाय के जाप के पश्चात भजन संध्या की भक्ति का यह प्रवाह अविरल जारी है। श्रोताओं, भारतीय दर्शन का परम सत्य सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना है। जो सत्य है वही कल्याणकारी अर्थात शिव है, और जो कल्याणकारी है वही शाश्वत रूप में सुंदर है। जब मनुष्य का मन इस परम सत्य से जुड़ जाता है तो उसे संसार की नश्वरता का बोध होने लगता है। आइए इस आध्यात्मिक गहराई को महसूस करते हुए सुनते हैं यह प्रसिद्ध रचना।

श्रोताओं, संसार का एक शाश्वत नियम है, सुख में सब साथ होते हैं लेकिन दुख में केवल ईश्वर ही एकमात्र सहारा बनते हैं। जीवन के इस परम सत्य को संत कवियों ने बहुत ही सहज और मार्मिक शब्दों में पिरोया है। जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है तब ईश्वर का नाम ही हमारे जीवन में प्रकाश की किरण बनता है। आज के इस भजन संध्या के अंतिम पड़ाव में आइए सुनते हैं यह मन को छू लेने वाला कालातीत भजन।

भक्ति, चिंतन और समर्पण से भरे इन सुरीले भजनों के साथ ही अब समय आ गया है आज की इस भजन संध्या को यहीं विराम देने का। उम्मीद है इन भजनों के माध्यम से आज की आपकी संध्या ईश्वर के सानिध्य और आत्मिक शांति से परिपूर्ण रही होगी। अब अपने दोस्त दुर्गा शंकर सूर्यवंशी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आपका पसंदीदा केंद्र आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। तो लीजिए, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनों को दो ही हाथ जोड़ के राम राम। हम हैं अमृता जैन, आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी। भैया बहनों, किसान वाणी कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आकाशवाणी भोपाल केंद्र से संजा के 7:30 से 8 बजे तक प्रस्तुत करो जय है। जी में हम बातें करेंगे खेती किसानी की तथा मौसम की, और ऐसी बातें जो हमारे कृषक भैया बहनन के लाने लाभकारी हों। कार्यक्रम में बातें हुई हैं जो आपके लाने अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा संगे संगे जो सरकारी योजनाएं हैं और अन्य खेत खलिहान से जुड़ी सभी चर्चाएं हम अपने कार्यक्रम किसान वाणी में करेंगे। तो भैया बहनों, जब आज के ये अंक में आप सबसे जुड़ गए हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृषि में सेंसर तकनीक पे। आज हम सब देख रहे हैं कि खेती करवे के लाने हमें केवल मेहनत नहीं करने हैं बल्कि सही तकनीकों को अपना के आधुनिक व सटीक खेती करने हैं जिसे हमारी कृषि उन्नत बने, और ऐसी ही तकनीक है कृषि में सेंसर तकनीक। अब बात करें कि जब तकनीक के द्वारा हम कैसे लाभ ले सकते हैं और का का फायदे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें ई तकनीक के द्वारा हम मृदा में नमी और तापमान कैसो है ई की जानकारी ले सकते हैं। हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है ई की जानकारी हमें मिलत है, जिसे हम इन जानकारी के माध्यम से आवे वाई जो हमारी फसल है वह हमें कौन सी लगाने हैं और इन पोषक तत्वों के आधार पे कौन सी फसल है जो हमें उन्नत और अच्छी आय देगी जा हम जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फसल अच्छी हुई है, लागत कम हुई है, खेत लहलहाएंगे तो हमारे कृषक भैया बहन तरक्की करेंगे, उन्नत बनेंगे। अब भैया बहनों बात करें जा तकनीक काम कैसे करते हैं। तो भैया बहनों, कृषि सेंसर तकनीक के कछु प्रकार हैं, जैसे कि मृदा सेंसर, मौसम सेंसर और फसल सेंसर। ये तकनीकें कृषकों को कब पानी और खाद देने हैं जो बताते हैं। हम यदि इन अलग अलग सेंसरों के बारे में बात करें तो भैया बहनों, मृदा सेंसर से हम मृदा की नमी और आर्द्रता नाप सकते हैं, जिसे हमें कब सिंचाई करने हैं ई की हम सही योजना बना सकते हैं। ई के अलावा मौसम सेंसर से हम हवा की नमी, तापमान और वर्षा व मौसम के बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। और यदि बात करें हम फसल सेंसर की, तो इसे पौधों की बीमारी और वृद्धि पे नजर रखी जा सकते है। मतलब कि जो कहें कि ई तकनीक से पानी को सही उपयोग होते है, पोषक तत्वों व खाद की कितेक मात्रा हमें खेतों में डालने हैं जो हमें पतो लगते हैं, और फसलों की अच्छे से देखभाल भी होते हैं। तो ये तकनीक के बारे में यदि आपको और जानकारी लेने हैं तो आप नजदीकी कृषि केंद्रों पे जाके जानकारी ले सकते हैं। अब भैया बहनों, अपन बात जब हम तकनीकों की कर रहे हैं तो हमें जो भी देख रहे हैं कि हमारे कई कृषक भैया बहनों ने सोयाबीन फसलों की बुवाई करी है, और अबे जो सावन को मौसम जो वर्षा ऋतु चल रही है इको देखत भए हमारी फसलों पे कई कीट व अन्य समस्याएं आ सकत हैं। तो चलो आज जानत हैं कि कैसे सोयाबीन फसल में समन्वित कीट व व्याधि प्रबंधन करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, और ई के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र पाटिल, और उनसे भेंट कर रही हैं हमारी बहन पूनम सरावगी। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
4: हमारे किसान भाई बहनों ने अपने खेत में सोयाबीन की बुआई कर दी है। पौधे इस समय फूल आने की अवस्था में हैं। ऐसे में सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लक्षण पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों की संख्या को आर्थिक रूप से क्षति स्तर के नीचे रखना आवश्यक है। इसके लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी हम विधियां अपना सकते हैं, इसी विषय पर हमने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र पाटिल को। आप कृषि विभाग भोपाल में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
5: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
4: सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन एवं व्याधि प्रबंधन क्या है और इसका क्या महत्व है?
5: सोयाबीन फसल में अगर हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करें तो आम तौर पर किसान साथी केमिकल या पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करते हैं
6: जी।
5: पर जब हम कीट एवं रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो उसकी तीन या चार प्रकार की जो विधियां होती है उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करके कीट या बीमारी नियंत्रण के लिए करते हैं तो हम उसी को समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, जिसमें भौतिक क्रियाएं होती है, मैकेनिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और अंत में जो साइन पर जाने की बात आती है। तो इसी विषय में आज हम किसान साथियों से बात करेंगे कि हम सर्वप्रथम हमारी जो जैविक विधियां होती है कीट नियंत्रण की या बीमारी नियंत्रण की, उनका पहले हम उपयोग करें, और परिस्थिति अगर ऐसी हो कि अगर हमारी जैविक विधियों से या कल्चरल जो हमारी विधियां हैं उनसे अगर कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो अंत में जो अनुशंसित की गई कीटनाशी है हम उनका उपयोग करें। तो इसी को हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आज सिर्फ रासायनिक दवाइयों से अगर कीटों को नियंत्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हिसाब से भी हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करते हैं।
4: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हम कैसे करें?
5: देखिए, सोयाबीन की फसल कीट एवं रोगों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है, और जब फसल अंकुरित होता है तब से ही इसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप चालू हो जाता है। खास तौर पर जब ये सोयाबीन 15 से 20 दिन या 25 दिन की अवस्था पर पहुँचता है
4: जी,
5: तो उस समय इसमें तना मक्खी, सफेद मक्खी कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल जैसे बढ़ती है उसके बाद सेमिल ऊपर एक इल्ली होती है, इल्ली का प्रकोप होता है। उसके बाद अलसी की इल्ली होती है तो अलसी की इल्ली भी सोयाबीन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा तम्बाकू की इल्ली, तो ये तमाम प्रकार के जो कीट हैं ये हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलते हैं
4: जी। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तना मक्खी और चक्रभ्रंग सोयाबीन को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
5: जैसे आपने बताया तना मक्खी एवं गर्डल बीटल को ही हम चक्रभ्रंग कहते हैं
4: जी।
5: तो ये दो बहुत ही मुख्य कीट है सोयाबीन की फसल में, और ये दोनों कीट फसल की शुरुआती अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तना मक्खी की बात करता हूँ। तना मक्खी का जो कीट होता है तो इसकी खी ना होके इसकी सबसे पहले एक छोटी सी इल्ली होती है, बहुत बारीक महीन होती है, पीले कलर की होती है। यह तने के अंदर सुरंग बनाकर तने के अंदर रहती है और वहीं पर अपना जीवन चक्र पूरा करती है, अंदर ही अंदर अंडे देके अंडे से इल्ली बनती है और वहीं पूरे तने को खोखलाकर पूरे पौधे को सुखा देती है, जिससे कि हमारा जो है पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम गर्डल बीटल की बात करें तो गर्डल बीटल चक्रभ्रंग पौधे के अंदर दो प्रकार की कट बनाता है, रिंग बनाता है ऊपरी सिरे पर, और ऊपरी सिरे से रिंग बनाकर पौधा वहां से मुरझा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा पौधा धीरे धीरे जो है कि इसमें गडल विटल में भी सूख जाता है। तो अब इसको हम इस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारी सस्य क्रियाएं होती है या हमारी बायोलॉजिकल विधियां होती है इनका हमें सबसे पहले इनके प्रबंधन की बात करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जब बीज बोने की बात करते हैं तो बीज हमारा जो है कि स्वस्थ बीज होना चाहिए, कीट एवं रोग से मुक्त होना चाहिए, ऐसे बीज का चयन करें। इसके साथ ही साथ बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं तो बाद में कीट एवं रोगों से हम हमारी फसल को मुक्त कर सकते हैं। स्टिकी ट्रेप अगर हम 1 एकड़ में 6 से 8 स्ट्रिप्स लगा दें तो उसपे क्या होता है कि पीले कलर की स्ट्रिप्स जो होती है तना मक्खी और सफेद मक्खी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और उस पीले कलर पर अट्रैक्ट होकर उस ट्रेप पर जाके बैठ जाती है। तो अगर हम ऐसे 1 एकड़ खेत में अगर 6 से 8 स्ट्रिप्स लगाते हैं तो हमारे सोयाबीन की फसल में जितने भी सफेद मक्खी है या तना मक्खी है तो उस पर आकर बैठेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में अगर इनसे भी अगर हमारा अंतर नहीं हो रहा है तो जो अनुशंसित की गई दवाइयां हैं जिसमें थायमेथोक्साम प्लस लेम्बड़ा साइलोथ्रिन की 50 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रेट की 140 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर आइसोसाइफ्लोसोरम की 200 ml मात्रा प्रति एकड़ करें, इनमें से किसी एक दवाई का उपयोग करके तना मक्खी एवं गर्डल बीटल चक्रभ्रंग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
4: सर ये बताइए, तम्बाकू की इल्ली और सेमी लूपर से सोयाबीन को क्या क्या नुकसान होता है और इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है?
5: जब हमारी फसल फूल के बाद वाली अवस्था में जैसे ही पहुंचती है तब सेमी लूपर और तंबाकू की इल्ली का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी सोयाबीन की जो फसल में जो पत्तियां होती है पत्तियों को खाती है और उसके बाद जब फली में दाना बैठने लगता है दाना आने लगता है तो उस समय दाने को भी खाती है। तो इस प्रकार हमारी सोयाबीन की फसल को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए हम अगर बात करें कल्चरल विधियों में तो किसान साथियों को इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपने खेतों में कराना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा फेरोमेन ट्रैप आता है जो कि जैविक विधियों के अंतर्गत हम उसका उपयोग करते हैं। फेरोमेन ट्रैप में अलग अलग जो हमारी इल्लियां होती है उसका अलग अलग लेयर मिलता है। तो ऐसे ही अगर एक एकड़ में हम 4 से 6 फेरोमेन ट्रैप अगर हम लगा देते हैं तो इल्ली बनने के पहले की जो उनकी अवस्था होती है फ्लाई रहती है तो मक्खी उस फेरोमेन ट्रैप में अट्रैक्ट होके एक जगह उस इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे पूरे खेत में अगर हम लगाते हैं तो इस प्रकार से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगर इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हम अनुशंसित जो कीटनाशी उन पर जाएं। इसके साथ ही साथ हम अपने खेत में किसान साथी इसमें टीब आकार की जो खुटियां होती है उनको भी अगर हम खेत में 8 से 10 खुटियां प्रति एकड़ अगर लगा देते हैं तो जो पक्षी होते हैं पक्षी उस टी आकार की जो खुटियां होती है उस पर आकर बैठेंगे और उनको जो इल्ली दिखती है तो इल्ली को खाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
4: जी सर, ये बताइए सोयाबीन में सफेद मक्खी से हमें क्या नुकसान होता है और इसका पीला मोज़ेक रोग से क्या संबंध है?
5: सफेद मक्खी शुरुआती अवस्था से ही सोयाबीन या अन्य फसल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसमें पत्तियों से रस चूसती है और रस चूसने के उपरांत जो उसका क्लोरोफिल होता है पौधे के पत्तियों में खत्म हो जाता है और पौधा पीलेपन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे को पूरा पीला कर देती है रस चूसकर सफेद मक्खी। और जब हम इसकी संबंध की बात करें मोज़ेक रोग से तो मोज़ेक फैलाने का काम भी क्या करती है सफेद मक्खी करती है, क्योंकि मोज़ेक जो बीमारी है यह वायरस से होती है और वायरस फैलाने का जो काम करता है वो सफेद मक्खी करती है। क्योंकि एक पौधे से अगर उसने रस चूसा और वहां पर उस वायरस मोज़ेक अगर बीमारी से ग्रसित है पौधा तो वहां से वो दूसरे पौधे पर जब जाएगी तो वहां का जो मोज़ेक वायरस है वो दूसरे पौधे पर ले जाके छोड़ेगी। इस प्रकार ये मोज़ेक रोग से इसका सीधा सीधा संबंध है।
4: जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीला मोज़ेक का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
5: पीला मोज़ेक बीमारी का जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसमें हम हमारा जो बीज का चयन करते हैं वो स्वस्थ बीज होना चाहिए, बीज रोग रहित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम बुआई करते हैं तो बुआई जब करते हैं तो कई किसान साथी आवश्यकता से अधिक बीज दर का उपयोग करते हैं या बुआई की दूरी है वो बहुत पास कर देते हैं तो जो खेत के अंदर पौध संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है। तो हम जो अनुशंसित की गई बीज दर है उस बीज दर के अनुसार बुआई करें, जो अनुशंसित की गई बुआई दूरी है हम उसी बुआई दूरी के अनुसार बुआई करें। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि हम फेरोमेन इसका एलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें और इसके साथ ही साथ जो अनुशंसित की गई जो दवाइयां हैं जैसे मैंने पूर्व में बताई थी कि थायमेटोक्सम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन या बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड इन दवाइयों का अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
4: जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉलर रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
5: कॉलर राइड बीमारी जब बुआई होती है उसके करीब 8 से 10 दिन के उपरांत ही हमें खेत में देखने को मिल जाती है। पौधा जर्मिनेट होकर जैसे बाहर निकलता है तो जिस लाइन में हमने सोयाबीन का बीज बोया था उसी लाइन में क्रमशः हमें पौधे सूख के गिरते हुए देखने को मिलते हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण है कॉलर राइड का और ये मुख्यतः शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। तो इसका सबसे सटीक जो उपचार है या सटीक अगर प्रबंधन है तो वो है बीज उपचार, क्योंकि अगर किसान साथी इसका बीज उपचार सही ढंग से या सही तरीके से करते हैं तो यह जो कॉलर राइड बीमारी देखने को नहीं मिलती है। अगर उसके बाद भी अगर हमें देखने को मिलता है इस बीमारी के लक्षण तो एक फफूंदनाशी जो होता है कार्बेंडाजिम तो इसकी 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कॉलर राइड को नियंत्रित किया जा सकता है।
4: जी सर, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोयाबीन में कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5: देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये किसान साथियों को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो भी कीटनाशी या फफूंदनाशी या अन्य दवाएं चाहे खरपतवार नाशी हो, जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो इसके साथ जो पानी की मात्रा है उसकी भी अनुशंसा की जाती है, क्योंकि कई बार हमें ये देखने को आता है कि कई किसान साथी अनुशंसा से कम पानी की मात्रा का उपयोग करते हैं, तो उस स्थिति में हमारी फसलों पर उस दवाई का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारी फसल जो किसान साथियों की जो फसल होती है उस पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे फसल जलने लगती है या सूखने लगती है। तो ये सब चीजें ना हो उसके लिए किसान साथियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो अनुशंसित की गई पानी की मात्रा है 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ मात्रा पानी की उपयोग होना चाहिए, और जो दवाइयां हैं कीटनाशी है या फफूंदनाशी उनकी दक्षता या उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जो अनुशंसित किया गया नोजल है होलोकोन नोजल का उपयोग करें। होलोकोन नोजल मतलब बहुत बारीक फुहार वाला नोजल होता है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमें इन दवाइयों का जो हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो उसके हमें बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, और उसकी जो दवाइयों की उपयोग क्षमता या दक्षता है वो भी हमें अधिक देखने को मिलेगी।
4: तो सर बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान श्रोता अपने सोयाबीन की फसल को बेहतर बनाने में इस जानकारी का अवश्य इस्तेमाल करेंगे। आप हमें जानकारी दे रहे थे सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन इस विषय पर। डॉक्टर पाटिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भैया बहनों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
6: तो भैया बहनों देखो, अब अपन ने जानी सोयाबीन फसल में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन की जानकारी डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से, जिनने बहुत अच्छे से हमें सभी बातें बताई हैं, और उनसे भेंट कर रही हती हमारी बहन पूनम सरावगी। उम्मीद है डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जब महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लाने लाभकारी रहे है, और आप सभी इन बातों को ध्यान रख के अपनी खेती में जो कीट व रोगों के जो भी प्रकोप हो रहे हैं उनसे बचाव हेतु सही उपाय करेंगे। अब भैया बहनों देखो, अपनी चर्चाएं हो रही हैं, भेंट वार्ता सुन ली, और आप सोच रहे हुई कि अमृता बहन जानकारी तो बड़ी नौनी दे रही हैं, मनो कछु मनोरंजन हो जाए तो आनंद ही अलग हुई है। सो भैया बहनों हम भी जई बात सोच रहे हैं, चलो तो सुनत है एक सावन गीत, जी गाँव है दया भार्गव और उनकी साथियों ने।

0: एक मधुर लोकगीत के संगे अब आप लोगन से एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करवो और चाह रहे हैं, और जो विषय है स्वच्छ पेयजल। अब देखो भैया बहनों, जब बात ही हमने पेयजल की करी, मतलब के पीवे के पानी की, और जो आप और हम सबको जान वो बहुत आवश्यक है, स्वच्छ व साफ पानी पे सभी को अधिकार है। हम जो भी जानते हैं कि दूषित पानी पीवे से अनेक बीमारियां होते हैं और जो हमें आगे चल के हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दे सकत है। इसे हमें दूषित जल से बचाव करने चाहिए और स्वच्छ जल को उपयोग करने चाहिए। और अबे देखो, वर्षा ऋतु चल रही है तो ऐसे में हम जानते हैं कि संक्रमण वाली बीमारियां बहुत जल्दी होते हैं, संक्रमण जल्दी होते हैं। तो खास तौर पे इस मौसम में डायरिया, टाइफाइड, दस्त, उल्टी और पेट से जुड़ी अनेक समस्याएं बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और यदि हम साफ जल को उपयोग करेंगे तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो हम तो जो ही कहेंगे कि पानी को उबाल लें और अच्छे से ठंडो करें, फिर यदि हम इको उपयोग करते हैं तो जल हमारे लाने अत्यंत लाभकारी हुई है। अच्छा भैया बहनों, बात हमने अपनी करी कि हमें स्वच्छ जल पीने हैं। मानो हमारे पशु हैं जो हमारे बाड़े में बंधे हैं, जो हमारी गौशालाओं में हैं, उनके लाने भी हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करने हैं, जिसे कि बेबी स्वस्थ रहें। और भैया बहनों, कथ है ना, पहलो सुख निरोगी काया। तो स्वच्छता से जुड़े और स्वच्छ जल ही पिए। अबे हम जो चर्चाओं के माध्यम से जो फसलों की बातें कर रहे हैं, तो हमारे कई कृषक भैया बहन ऐसे भी हैं जो बागबानी फसलें लगावे की सोच रहे हैं या लगावे को उन्हें प्रबंधन भी कर लो हुई है। तो आज हम डॉक्टर कुंवर जी सिंह से जानेंगे कि बागबानी फसलों में सामायिक कार्य कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं, इस विषय पे भी आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुनते हैं उनकी जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज बात करेंगे बागवानी ध्यान की फसलों के लिए सामयिक सलाह। देखिए किसान भाई, आप भी जानते हैं कि रोपाई द्वारा लगाई जाने वाली जो भी बागवानी फसलें हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी के लिए नर्सरी की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हमें 3-3.5 मीटर लंबा और करीबन 1.5 मीटर चौड़ा और जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनी रहनी चाहिए। और खास तौर से इन सब्जियों के, जो टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की हम बात किए हैं, इनके संकर किस्मों की जो मात्रा आती है 10 ग्राम प्रति क्यारी के दर से हम बीज लगाते हैं। और 1 हेक्टेयर के लिए इस तरह से अगर टमाटर की नर्सरी तैयार करना है तो 15 क्यारी लगेंगी टमाटर के लिए, बैंगन के लिए करीबन 20 क्यारियां की जरूरत पड़ेगी और गोभी के लिए करीबन 30 क्यारियों की आवश्यकता होगी। इस समय नींबू फसलों में फल जो बढ़ रहे हैं, जो एक आम के टिकोड़े के बराबर या कहना चाहिए कि बड़े बड़े नींबू के फल लगे हुए हैं, वो उस समय गिरते हैं। तो इनको गिरने से बचाने के लिए हमें तो 1.5 ग्राम 2,4-D या इसी के बराबर जिब्रेलिक अम्ल आता है, यानी दोनों में से कोई भी एक 2,4-D या जिब्रेलिक अम्ल जो है 1.5 ग्राम लगेगा, और 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये फफूदनाशक है, ये 100 ग्राम, और 1 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो नींबू के जो फल गिरने की जो शिकायत है ये कम हो जाएगी और हर तरह से उसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप भी कम रहेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि आम के पेड़ों पर बगीचे लगाए हैं उसमें एक बंधा रोग है जिसको हम अंग्रेजी में माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये आप लोग भी पहचानते हैं, जहाँ उसका जो गुच्छा बनता है, जहाँ आम के जो, तो वो गुच्छे में ही वो एक माइट होता है, कीड़े के बराबर है। हालांकि हम लोग कीड़े के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में उसको हम माइट बोलते हैं, जिसको मकड़ी के कटे ग्रुप में आता है। इसके जो ग्रसित हो जाती है तो पौधे दूसरे टहनियों में भी फैलाता है उस कीड़ के द्वारा, जिसको कि हम माइट बोलते हैं। या तो ऐसे जो ग्रसित पौधे हैं इस समय, उसको जरूर आप रोग ग्रसित जो शाखाएं हैं या फूलों को है जो काट करके उसको अलग कर दे। नींबू वर्गी में आप लोग भी जानते हैं, इस समय नींबू की तितली, खूब रंग बिरंग की तितली उड़ती है, वो अंडे रखती है और अंडे से ही एक इली निकलती है जो पत्ती को खा जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि चिड़िया ने बीट कर दिया, बीटता है, लेकिन वो इली है और वो इली मुलायम पत्तियों को खा करके बहुत नुकसान करती है। क्लोरोपाइरीफास भी जानते हैं, 25 cc का, ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देंगे तो इसका नियंत्रण होगा। किसान भाई, आप भी बहुत कुछ समझदार हैं और जानकारी रखते हैं, अनुभव है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी समस्या से आप राहत पा सकते हैं।
0: ई बागबानी फसलों में सामायिक कार्य विषय की जानकारी के बाद हमारे जो सभी भैया बहन हैं उन्हें महत्वपूर्ण कृषि सलाह दी जा रही है। आपने यदि अपने खेतों में सोयाबीन, धान व अन्य खरीफ फसलें लगाई हैं, तो अपनी फसलों की निगरानी करें व ध्यान रखें कि उनपे कोई भी तरह के कीट व रोगों को प्रकोप न हो पाए। और यदि ऐसे कछु प्रकोप देखवे मिलत है तो मौसम साफ हो तो ऐसे में जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग करें। अपने भैया बहनों को हम और बता दें कि यदि आप अपनी फसलों को अधिक पैदावार देके बढ़ावो चाहते हैं तो आप फसल चक्र अवश्य अपनाएं। तो जाहती खेती किसानी से जुड़ी आज की सलाह। और भैया बहनों, अब किसान वाणी कार्यक्रम में आज ते कई आपको आज को कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। भैया बहनों, अब ले रहे हैं आप लोगों से विदा। आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर आपके लिए हम पेश करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुन पाएंगे रात 9:30 पर। रात 10:00 हम आपके लिए पेश करेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदनवार। सुबह 6:35 पर विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर। सुबह 7:00 आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत किया जाएगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। उज्जैनी आरजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। 10:00 आपके लिए हम लाएंगे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन और सुबह 10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सुबह 11:00 से विविध भारती मुंबई का अनुप्रसारण होगा, कार्यक्रम होगा रंग तरंग। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:00 आपके लिए हम लेकर आएंगे फिल्म संगीत। सदाबहार नगमे पेश किए जाएंगे दोपहर 2:30 पर। सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे दोपहर 3:00। शाम 4:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आज के मेहमान। शाम 5:00 से आकाशवाणी उज्जैन से सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा शाम 6:00 और शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम माटीरी बात, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और सुमधुर निमाड़ी लोकगीत। 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 8:15 पर आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आपके लिए हम पेश करेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र में फिर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े बड़े फैसले। कवच योजना समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुंबई दौरा। ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेशकों से किया संवाद। और गायक किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष नीट पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जिनमें आतंकवाद, गैंगस्टर, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों के आरोपी शामिल हैं। सरकार ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच भगोड़ों की 17,874 रुपये की संपत्ति जब्त की गई और 18,762 करोड़ रुपये की राशि वापस हासिल की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी मिली, जिससे करीब 5,000 किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 2026 से 2031 तक 12,517 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये और मलेरिया नियंत्रण के लिए करीब 1,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया,
1: जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना भी प्रारंभ हो रही है। जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं और उच्च श्रेणी के या फिर माध्यमिक शिक्षक, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव रखा गया है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधे संवाद कर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान देश की कई प्रमुख

0: दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
1: बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए। मध्यप्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को

उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे दिन समाधि परिसर में उनके सदाबहार गीत गूंजते रहे और संगीत प्रेमियों ने उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। अब से कुछ देर बाद किशोर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी प्रस्तुति देंगे। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा में मंथन तेज हो गया है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर हुई बैठक में हार के कारणों और भीतरघात की शिकायतों पर चर्चा हुई। भाजपा ने हार की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री 31 अगस्त तक हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक राशन का 100% उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण पूरा किया जाए। अंत्योदय योजना के परिवारों को 35 किलो और प्राथमिकता के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जाएगा। दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को 1 किलो नमक भी मिलेगा। राशन वितरण के समय POS मशीन में 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। राशन परिवहन की GPS से निगरानी होगी और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा एयरपोर्ट पर 9 अगस्त से नई विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। अब रीवा से कोलकाता और भोपाल के लिए 72-सीटर विमान उड़ान भरेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नई उड़ान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं रिमझिम बारिश के बीच समर्पण कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। त्रिवेणी घाट से शुरू हुई यात्रा में भक्त मां शिप्रा का जल लेकर महाकाल मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है और ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 से 14 अगस्त तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अशोकनगर जिले की आदिवासी बस्ती बमनावर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज बाल चौपाल का आयोजन किया गया। राजगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा। मंडला में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में 7 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। आइए सुनते हैं मालवी बोली में लोकप्रिय कार्यक्रम मालवी की तारी गूंज।

राम राम किसान भाई। आकाशवाणी उज्जैन से मैं आपको अपना रेडियो साथी मुकेश भैया आपका पसंदीदा कार्यक्रम मालवी गिटारी गूंज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, सावन को महीनों चाली रो है, चारे आड़ी अपना खेत हूं में हरी भरी चादर बिछी गई है। अपना मालवा की मिट्टी की तो बात ही निराली है। सवेरे सवेरे सूरज की पहली किरण का साथे अपन खेत की तरफ निकला तो अपना खेत में मेहनत का संगीत गूंजी उठे है, और सांझ पड़वा पे अपना गांव की चौपाल पे ढोलक मंजीरा की साते गीत संगीत गूंजे। दिन भर की थकान तो मालमेज नहीं पड़े। तो आज अपनो मालवी गिटारी गूंज कार्यक्रम को विषय है चौपाल से खलियान तक मालवी लोक जीवन की मिठास। आओ आज अपन अपना मालवा की मांटी की सोंठी खुशबू, खेत की रंगत और चौपाल की मस्ती, मालवी जीवन की मिठास को आनंद अपनी संस्कृति का साथे ला। पण उका पेला समय है देश और दुनिया को हाल जानवा को, तो चलो सुना मालवी समाचार।

सगला किसान भाइयों के राम राम। अब आप मुकेश मेहता से मालवी समाचार सुनो। सबसे पहला आज का खास समाचार। संसद का मानसून सत्र में आज भी हंगामा हुआ, जिसका कारण लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सवेरे तक का वास्ते स्थगित कर दी गई। भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजन हुआ। नवी शिक्षा नीति 2020 का तहत उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम के आधुनिक और रोजगार से जोड़वा पे मंथन हुआ। और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती का दौरान बाबा महाकाल को राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार हुआ। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र में आज भी हंगामा हुआ, जिसका कारण लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सवेरे तक का वास्ते स्थगित कर दी गई। विपक्ष नीट पेपर लीक और जंतर मंतर प्रदर्शन का दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा पे सरकार से जवाब मांगी रही है। वहां दूसरी तरफ आज एनडीए संसदीय साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन का अनेक नेता शामिल हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्री हुन्ने सांसद हुन्के सरकार की प्रमुख योजनाओं और अभी का मुक्त व्यापार मेला समझौता की जानकारी दी। भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजन हो, जिसमें नवी शिक्षा नीति 2020 का तहत उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम हुन्के आधुनिक और रोजगार से जोड़वा पे मंथन हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का मुख्य अतिथि था। इसे देशभर का शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय उनका कुलगुरु शामिल हुआ। रीवा एयरपोर्ट से 9 अगस्त से नई विमान सेवा शुरू होने वाली है। अब रीवा से कलकत्ता और भोपाल का वास्ते 72 सीटर विमान उड़ान भरेगा। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात करके शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने को आग्रह करियो। उनने कियो कि नवी उड़ान सेवा से विंध्य क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश के बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सगड़ा जिला में आम लोग की भागीदारी सुनिश्चित करना का निर्देश दिया है। अभियान का दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़िया नरा आयोजन होगा। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती का दौरान बाबा महाकाल को राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार करियो गयो, ने वहां रिमझिम बरसात का बीच में समर्पण कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुआ। त्रिवेणी घाट से शुरू हुई यात्रा मां शिप्रा को जल लेके महाकाल मंदिर पे पहुंचिया और अभिषेक करियो। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने बाबा महाकाल का दिव्य स्वरूप का दर्शन करिया। भारतीय सिनेमा का महान पार्श्व गायक और अभिनेता स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती पे आज खंडवा में उनकी समाधि पे पुष्पांजलि अर्पित हुई। वहां सांजे 7:30 बजे पुरानी

कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट को आयोजन होगा, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार का गीत प्रस्तुत करेगा। नीमच कलेक्टर ने आज जन सुनवाई में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने 147 लोगों की समस्या सुनी, जिन उनने अधिकारियों के सगला आवेदन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करवा को निर्देश दियो। आगर मालवा में शांति समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने त्योहार उनके देखता हुआ अधिकारी उनके प्रकाश व्यवस्था, सड़क की मरम्मत, विद्युत सुरक्षा और आपात चिकित्सा का इंतजाम करवा का निर्देश दिया। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का वास्ते जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी उनके नियुक्ति करी गई है। वहां जिला में टीकाकरण की व्यवस्था की समीक्षा का वास्ते राज्य स्तरीय विशेषज्ञ दल ने स्वास्थ्य केंद्र उनको निरीक्षण करवा को और सुधार करवा को निर्देश दियो है। इंदौर का आईटीआई नंदानगर में आयोजित युवा संगम रोजगार मेला में 26 कंपनी हुन ने हिस्सो लियो। मेला में 647 युवा हुन ने पंजीकरण करायो, जिनमें से 531 अभ्यर्थी उनको प्रारंभिक चयन हुआ। इना दौरान 44 युवा हुन के अप्रेंटिसशिप योजना में कंपनी में भेजो गयो। अब बात मौसम की। अभी प्रदेश में मानसून की चाल धीमी पड़ी गई है। पिछला 4 दिन से प्रदेश का कहाँ पे भी तेज बरसात नहीं हुई और ज्यादातर इलाका में खाली बादल छाया रेवा या हल्की बूंदाबांदी को दौर चली रही है। मौसम विभाग को कहना है कि आज प्रदेश में आज और कल भी ऐसोज मौसम चलेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ का असर से नरा जिला में फिर से तेज बरसात हो सकती है। तो ये था आज का समाचार।

किसान भाई, अपना खेत में अभी तो निंदाई गुड़ाई को काम चली रहो है, और वो भी जोर शोर से। तो खेत में काम करता करता अपना भाई बहन जदे एक सुर में अपना मालवी लोकगीत गावे तो सगली रोपाई ने निंदाई गुड़ाई को कठिन काम भी खेल खेल में पूरा हो जावे। तो आओ अपना आज का कार्यक्रम की शुरुआत भी सुर मधुरता और आनंद का साथे करा और सुना एक प्यारो सो मालवी लोकगीत।

0: किसान भाई, मालवा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में मालवी लोक नाट्य माच की अपनी एक खास जगह है। लोक भाषा, लोक संगीत और अभिनय को एक अद्भुत संगम माच अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीतो जागतो रूप है। आज अपन इन्हें महत्वपूर्ण लोक नाट्य परंपरा पे चर्चा करांगा। इन्हें विषय पे बात करवा वास्ते अपना साथे है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का कुलानुशासक श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। तो आओ उनकी बात सुना।
1: साथियों नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। मालवा की संस्कृति पहचान केवल उसके लोकगीतों, लोक नृत्यों और पर्व त्योहारों से ही नहीं बल्कि समृद्ध लोक नाट्य परंपराओं से भी निर्मित होती है। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाट्य शैली है माच। संगीत, अभिनय, संवाद और लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति से समृद्ध माच ने सदियों से मालवा की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत बनाए रखा है। आज के इस विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो मालवा के सांस्कृतिक, साहित्यिक और लोक कलाओं के गहन अध्येता हैं। हम उनसे माच की ऐतिहासिक यात्रा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: जी नमस्कार मेहता जी। अभी जिस महत्वपूर्ण विषय पर ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मालवा का लोक नाट्य माच, भारत जो है वह विविध लोक साहित्य और कला अभिव्यक्तियों का देश। भारत का ऐसा कोई अंचल, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कोई लोक नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य आदि लोक में प्रचलित न हो। मालवा न केवल मध्य प्रदेश का वरन भारत का हृदय स्थल है। तो मालवा का लोक नाट्य माच एक तरह से भारत के हृदय की अभिव्यक्ति है। इस रूप में मालवा के लोक नाट्य माच को लेकर निरंतर न केवल विमर्श हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रयोग हुए हैं और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बावजूद माच आज भी जीवंत है।
1: सर, माच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे अन्य लोक नाट्य शैलियों से अलग बनाती है?
2: भारत लोक नाट्य भूमि है और भारत की विशेषता है कि सुदूर अतीत में जब नाट्य शास्त्र का विश्वकोश रूपी एक महान ग्रंथ तैयार हुआ था, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो उसमें एक तरफ शास्त्र और दूसरी तरफ लोक, दोनों ही प्रकार की जो हमारी विशेषताएं रही है उन सबका समावेश भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत किया है। मालवा का लोक नाट्य माच अन्य लोकधारा के नाट्य

0: परंपरा है उसके साथ कई संवाद और कहीं भी संवाद कायम करता है। संवाद की स्थिति यह बनती है कि सभी की प्रेरणाएं समान है, सभी में भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें तो स्थानीय जो स्वरूप है अभिनय के वो अलग अलग है, कुछ विशेषताएं लिए हुए होते, लेकिन इन सबके बीच में रिश्ता है, आपसदारी है। मालवा का लोक नाट्य मार्च मालवा की संस्कृति का प्रतिनिधि लोक नाट्य है, इसलिए मालवा क्षेत्र के लोक मानस, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के जीवन मूल्य, लोगों का सहज जीवन, ये सब कुछ हमें मार्च में परिलक्षित होता है, जो उसे अन्य लोक नाट्यों से विशिष्ट और अनुपम बनाता है।
1: मार्च में संगीत, गायन और संवाद की क्या भूमिका है?
0: हमारे यहाँ नाटक को चार आयामों के साथ देखा गया अभिनय के। पहला महत्वपूर्ण होता है वाचिक अभिनय कर, दूसरा महत्वपूर्ण आयाम जो होता है वह आंगिक होता है, तीसरा आहार्य होता है और चौथा सात्विक होता है। चार प्रकार के जो अभिनय है उन चारों का समावेश हमें मार्च में दिखाई देता है। मार्च टोटल थिएटर है, समग्र लोक नाट्य है, इसलिए चारों प्रकार के अभिनय विधान हमें यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें संगीत, नृत्य, संवाद अदायगी, पात्रों के विशेष प्रकार से प्रवेश और प्रस्थान की जो प्रणालियां हैं, ये सब कुछ हमें दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि मालवा का लोक नाट्य मार्च एक समग्र लोक नाट्य है।
1: पारंपरिक मार्च के प्रमुख रचनाकारों और कलाकारों को आप किस प्रकार स्मरण करेंगे?
0: मार्च का उद्विकास मालवा क्षेत्र में लगभग 250 वर्ष पहले हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले यहाँ पर कोई लोक नाट्य विधाएं नहीं थी, लोक नाट्य के बहुत सारे स्वरूप, स्थानीय स्वरूप प्रचलन में थे। यहाँ पर मंडलियां आती थी, रासलीला की मंडली आती थी, रामलीला की मंडली आती थी, इसी तरह से जो एक विशिष्ट नाट्य प्रकार है राजस्थान का, जिसको हम लोग देखते हैं ख्याल के रूप में, तो ख्याल के जो खेल है वो भी यहाँ पर होते थे। उस समय जबकि मालवा में अपना स्वतंत्र कोई लोक नाट्य बड़े रूप में आकार नहीं ले पाया था, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे गुरु गोपाल जी। गुरु गोपाल जी जो है वो भागसीपुरे में निवास करते थे। उन्होंने जब ये देखा कि राजस्थान से मंडलियां आ रही है, उधर ब्रज क्षेत्र से रासलीला की मंडलियां आ रही है, इसी प्रकार रामलीला की मंडलियां आ रही है, मालवा में कुछ स्वांग के प्रकार थे, स्वांग स्थान स्थान पर करने वाले लोग, बहुरूपीय लोग, ये सब भी अपना कार्य व्यापार कर रहे थे, ढारा ढारी के खेल यहाँ पर होते थे, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे यहाँ पर नाट्य के आयाम थे। तो उन्होंने राजस्थान के उस महत्वपूर्ण लोक नाट्य से अभिप्रेरणा ग्रहण की और अपना स्वतंत्र एक मंच तैयार किया, जिसको कि उन्होंने मार्च के रूप में नाम दिया है। तो लगभग 225 से अधिक वर्ष हो गए, लगभग 250 वर्ष पहले जो है उनका जन्म हुआ था गुरु गोपाल जी का। और पूर्ववर्ती जो भी परंपराएं थी वो अस्तित्वमान थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मार्च को आकार दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग क्रमानुसार जुड़ते चले गए। यदि हम बात करें गुरु गोपाल जी की, तो हमें इस परंपरा में गुरु बाल मुकुंद जी को याद करना होगा, हमें याद करना होगा फकीरचंद जी को या भेरूलाल जी को या इसी प्रकार से सालिग्राम जी को, काजूराम उस्ताद को, और राधा किशन वाडिया जी को याद करना होगा, आनंद बाबू साखला उनको हमें याद करना होगा। तो मार्च जो है वो शुरुआत उसकी लगभग 250 वर्ष होती है, लेकिन ये सतत गतिशील रहा है। और मालवा क्षेत्र में एक समय था कि इधर उज्जैन, इंदौर, देवास जिलों से लेकर के और उत्तर में दशपुर क्षेत्र में चले जाए तो नीमच मंदसौर का जो इलाका है वहां तक अनेक मार्च मंडलियां काम करती थी, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। धीरे धीरे समस्या ये आई कि सिकुड़ता चला गया, ये पूरा का पूरा जो घरानों की जो परंपरा थी सिकुड़ती चली गई। फिर भी हम ये देखते हैं कि लगभग पिछले करीब 20-25 साल पहले तक 25 से अधिक मंडलियां सक्रिय थी। मार्च के क्षेत्र में जिन विभूतियों का भी नाम स्मरण में कर रहा था, उसमें बाद के दौर में पंडित ओम प्रकाश शर्मा जुड़े, जिन्हें पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा मार्च विधा में योगदान के लिए अलंकृत किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत महत्वपूर्ण मार्चकार, मार्च गुरु सेल हुए हैं। तो बाद के दौर में जैसे हम लोग जिन लोगों की बात अभी कर रहे थे वो सब पूर्वज पीढ़ी के लोग थे, चाहे गुरु गोपाल जी हो, बाल मुकुंद जी हो, या फिर हमारे अपने दौर के सिद्धेश्वर जी के भी गुरु जी राधा कृष्ण जी हो, ऐसे बहुत सारे गुरु थे जो अपने ढंग से मार्च के विकास में योगदान दे रहे थे। इन लोगों ने 150 के आसपास मार्च लिखे हैं और ये 150 मार्च अभी ये सुखद है कि 150 में से लगभग 50 से अधिक मार्च प्रकाशित होने जा रहे हैं। कालिदास संस्कृत अकादमी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है और उसमें मैंने अपनी ओर से सहयोग दिया कि मार्च के बारे में एक सुसंगत, एक सुव्यवस्थित विवेचना का आयाम भी वहां पर उद्घाटित हो, तो वो एक

0: के रूप में आ रहा है। इसके पहले लगभग 20 वर्ष पहले मालवा माच महोत्सव हम लोग करते आए, उसी दौर में मालवा का लोक नाट्य माच और अन्य विधाएं एक पुस्तक मेरे द्वारा तैयार की जाकर और उसे प्रकाशित किया गया। हमारे इस प्रयास के पहले मालवा के प्रतिनिधि नहीं वरन पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य माच इस शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी शिव कुमार मधुर जी की, जिन्होंने माच विधा पर पहला उच्च स्तरीय शोध कार्य किया था। तो एक सातत्य बना हुआ है और मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो माच के कलाकार, माच के गुरु या मंडलियां सक्रिय हैं, बिना पूर्वजों के प्रयासों के वो यहाँ तक नहीं आ सकता था।
1: समय के साथ माच में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं?
0: माच अपने कुछ मूल कथानकों को लेकर के पहले काम करता था। समय के प्रवाह में जैसा होता है कि विधाएं बदलती हैं, तो विधाओं की पहले अंतर्वस्तु बदलती है। माच की अंतर्वस्तु में भी परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं कि पुराने जो विषय थे वो अब छोड़ दिए गए, वो विषय भी है, लेकिन समय के प्रवाह में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह होता है कि माच सामाजिक विषयों से जुड़ता है। सामाजिक चेतना से जुड़े हुए विषय माचकार अपने मंचन में लेकर के आते हैं और उसका सुपरिणाम यह होता है कि माच जन जागरूकता का माध्यम बनता है। तो यह तब्दीली हमें माच में दिखाई देती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदर्भ उसकी मंचन शैली को लेकर के है। पहले माच जो है वो खुले मैदानों में खेला जाता था। माच की जो स्थापना होती थी, मंच की जो स्थापना होती थी, पर्याप्त समय पहले किसी शुभ दिवस शुभ मुहूर्त पर लोग जो है उस स्थान पर एक स्तंभ या खंभा गाड़ते थे और उसके बाद में पूजन आदि करने के बाद में मंच निर्माण का कार्य प्रारंभ होता था। मंच बहुत ऊंचे आकार का होता था। शब्द हमारे मालवा में प्रचलित है मचान, इसी प्रकार बैठने के लिए माची होती है। तो मचान जो है या जो ऊंचा जो एक मंच है वो बनाया जाता था। इतना ऊंचा मंच होता था कि रात्रि को मंचन हो रहा है और दिन में उसके नीचे से बैलगाड़ी निकल जाती। इतने ऊंचे मंच जो है तैयार किए जाते थे। तो माच शब्द का संबंध मंच से भी है और हमारे लोक प्रचलित मचान से भी है। तो मंच हुआ, मचान हुआ, माच हुआ, ये परस्पर एक दूसरे से संपृक्त शब्द है। तो माच लोक रूप है रंगमंच का। तो इस रूप में हम देखते हैं कि ये ऊंचे ऊंचे मंच बनाए जाते थे, इतने ऊंचे कि दिन में बैलगाड़ी निकल गई है। अब माच जब नए स्वरूप में आगे आया तो पारंपरिक जो परिपाटी थी जिसमें कि मशाले जलाई जाती थी, बाद में पेट्रोमैक्स का दौर आया तो वो जलाए जाने लगे और आगे बढ़े तो विद्युत की सुविधा उपलब्ध हो गई, तो बल्ब या मर्क्यूरी जलाई जाने लगी। अब तो ये हो गया कि हैलोजन के माध्यम से भी प्रकाश दिया जा रहा है। तो मंच में परिवर्तन हो रहा है, प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। माच में एक बड़ी तब्दीली सिद्धेश्वर सेन लाते हैं, वो ये कि माच के उस प्रवाह के बीच उन्हें प्रतीत होता है कि मालवा की बहुत सारी ऐसी विशिष्ट लोक शैलियां हैं। तो सिद्धेश्वर जी ने यह प्रयास किया कि मालवा का माच पहले से भी टोटल थिएटर था, उसमें उन्होंने कुछ और लोक तत्वों का समावेश किया। तो इन 250 वर्षों में माच ने जो यात्रा की है उसमें अभी लगभग पिछले 5 दशकों के दौरान अंतर्वस्तु हो, चाहे माच के मंचन की प्रणालियां हो या विभिन्न प्रकार के लोक तत्व हो, उन सब में परिवर्तन हुआ है।
1: क्या माच केवल मनोरंजन का माध्यम है या समाज को शिक्षा और संस्कार भी देता है?
0: हमारे जितने भी लोक नाट्य प्रकार हैं, दो महत्वपूर्ण आयामों को समेटा है। हमारे यहाँ साहित्य के जो प्रयोजन माने गए हैं उसमें ये बताया गया कि मनुष्य सामान्य कार्य भी करता है तो बिना प्रयोजन के नहीं करता। तो साहित्य जैसी सृष्टि क्या बिना प्रयोजन के हो सकती है? बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। अतः दो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पूर्वज लोक मनीषियों ने, शास्त्रज्ञों ने प्रस्तुत किए कि कोई भी कृति, कोई भी साहित्य विधा हमारे अंदर आनंद उत्पन्न करती है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रयोजन तो आनंद है ही। हमने मनोरंजन के रूप में कभी भी साहित्य को नहीं लिया, हमने उसके ऊपर आनंद के स्तर पर हमने लिया है। और दूसरा उपदेश, तो एक तरफ आनंद है, दूसरी तरफ उपदेश है और उपदेश में भी मंगल विधान के साथ उपदेश है। तो माच इन दोनों विधाओं को साधता है।
1: क्या आज की युवा पीढ़ी माच से जुड़ रही है? यदि नहीं तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: मालवा लोक नाट्य माच, जो कि हम लोगों ने एक समय हुआ था कि मालवा का माच मेला आयोजित किया गया था अभैरवगढ़ में और तमाम प्रकार की मंडलियों के साथ साथ नए जो रंग निर्देशक हैं, नए जो कलाकार हैं, उन सबको भी वहां आमंत्रित किया गया। तो माच मेला एक तरह से 80 के दशक की एक महत्वपूर्ण परिघटना है और माच कलाकारों को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के साथ भी जोड़ा गया, उन लोगों ने भी माच का अवलोकन किया। तो एक तरह से नए रंगमंच के साथ जब नए प्रकार का रंग आंदोलन भारत में चल रहा था तो माच ने भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी लगभग पिछले 25 वर्षों के दौरान मालवा माच महोत्सव हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं और NSD से प्रशिक्षित स्नातक हफीज खान वो डूबे हुए हैं, लेकिन माच के प्रति उनका विशेष प्रेम है और इस महोत्सव की पीठिका रखते हुए यही प्रयास किया गया कि जो मंडलियां सीमित होती चली जा रही हैं, जितनी भी उपलब्ध है हमारे अपने समय में उन सबको एकत्र किया जाए, विस्मृत कर रही हो तो उन्हें फिर से तैयार किया जाए माच के मंचन के लिए। तो ये सुखद रहा कि पिछले 25 वर्षों के दौरान लगभग हम लोगों ने 50 से अधिक माचों का मंचन महोत्सव के माध्यम से करवाया। आगे के चरण में एक और महत्वपूर्ण आयाम आया कि कुछ नए माचकार लेखन और मंचन दोनों दृष्टियों सक्रिय हुए, जैसे अनिल पांचाल हुए हैं या सुधीर भाई साखला है, बाबूलाल देवड़ा चिकली वाले हैं, या फिर महत्वपूर्ण निर्गुणी और कबीर गायक है सुंदरलाल मालवीय। सुंदरलाल मालवीय ने माच में नए विषयों का समावेश किया, उन्होंने कबीर पर माच का मंचन किया, उन्होंने स्वच्छता का जो अभियान चल रहा है इस समय और जो बहुत ही सफल और सार्थक रूप में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और उसके साथ साथ स्वच्छता के की दिशा में सन्नद्ध कर रहा है, तो उससे संबंधित माच उन्होंने तैयार किए, मंचन हुआ। तो कहने का मतलब यह कि माच केवल परंपरागत और फिर अभिनव सोपान के साथ ही आगे नहीं आया है, वो समकालीनता के साथ भी संवाद स्थापित करता हुआ आगे बढ़ रहा है।
1: सर, अंत में आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं विशेषकर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा ये मानना है कि जो भी कला माध्यम है वे परिपूर्णता के साथ हमारे बीच आते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो विशेष प्रकार की रसिकता की आवश्यकता, मेरा ये मानना है कि लोक नाट्य लोक संगीत का आस्वाद लेने के लिए भी विशेष प्रकार की रसिकता आवश्यक है। नृत्य प्रकार होते हैं, जनजातीय नृत्य प्रकार होते हैं, जनजातीय लोकगीत होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि आवृत्ति होती है, यानी एक विशेष प्रकार की आस्वाद क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। हम संजा मांडना गणगौर विशिष्ट पर्व उत्सव से जुड़े हुए लोकगीत को भी हम ले सकते हैं। ये सब मिलकर के हमें हमारे अंदर जीवन की एक रास्ता को जड़ता को तोड़ने का कार्य करते हैं। अतः जब जीवन के प्रवाह में सब कुछ मशीनी हो जाने को विवश होते जा रहे हैं तब मनुष्य को और उसकी मनुष्यता को बरकरार रखने के लिए बिना लोक साहित्य बिना लोक नाट्य लोक अभिव्यक्तियों के यह जीवित नहीं रह पाएगा, नहीं कर पाएंगे, न उसे संरक्षित रख पाएंगे।
1: आदरणीय सर, आपने माच परंपरा के इतिहास, उसकी संस्कृति, महत्ता, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अत्यंत सारगर्भित एवं प्रेरक विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आकाशवाणी उज्जैन परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई, सही बात तो यह है कि अपना मालवा की चौपाल से लेके खेत खड़ा तक कोना कोना में संगीत बसे हुए है। ये खाली मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो अपनी परंपरा, अपनी मिट्टी को प्रेम और अपना पूर्वज उनका दिया हुआ संस्कार है जो आज भी अपना गांव हुन में धड़की रियो है। तो आओ एक माच गीत को आनंद ला और सम्मान करा अपनी गौरवशाली परंपरा को।
3: प्रथम

किसान भाई, अपनी मालवी संस्कृति में जो मिट्टी की सुगंध है वह तो सीधी अपना दिल में उतरी जावे। सावन को महीनों और सावन का सेरा का बीच में खेत में हेली या किसानी तान नहीं सुने तो ऐसा हो ही नहीं सके। किसान जदे खेत की मेड़ पे हल चलाते चलाते हेली गावे तो ऐसा लगे जाना आँखों जंगल उका सुर में सुर मिले ही रहो। अपना गीत में खाली मेहनत नहीं है, इमें तो सावन की ठंडक और अच्छी फसल के आवा की उम्मीद भी छिपी रहे। अपना मालवा की माटी को स्वर जदा अपना कान में पड़े तो वी खाली गीत नहीं रहे, वी तो अपनी संपूर्ण संस्कृति को अनुभव है। अपनी संस्कृति के आगे बढ़ावा ने लो आप मालवा की प्यारी बोली में इना बहुत प्यारा गीत को आनंद।

किसान भाई, दिन भर खेत में मेहनत करवा का बाद जदे सूरज अस्त हुई जावे ने पक्षी अपना घोंसला उनमें चलिया जावे, फिर शुरू होए अपना गांव की चौपाल। गांव की चौपाल जहाँ सुख दुख की बात होवे, जहाँ बड़ा को अनुभव ने छोटा को सम्मान न ग्यावे। ढोलक की थाप में निर्गुणी भजन, चेतावनी भजन और हास परिहास का मालवी लोकगीत को आनंद आवे। या चौपाल तो अपनी मालवी संस्कृति की असली गढ़ है। किसान भाई, आओ स्वर ताल की दुनिया में आनंद ला चौपाल को और सुना चौपाल जैसो आनंद और यो प्यारो लोकगीत।

किसान भाई, सही बात तो यह है कि अपना मालवा की चौपाल से लेके खेत ने खड़ा तक कोना कोना में संगीत बसे हुए है। ये लोकगीत खाली मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो अपनी परंपरा, अपनी माटी को प्रेम और अपना पूर्वज को दिए हुए संस्कार है। तो आज जहाँ भी अपना गांव में धड़की रही है, किसान भाई बात बात में टेम को तो पतो नहीं चलियो, ने स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अब आपसे विदा लेवा को टाइम वही गयो है। आशा है आज को चौपाल से खलिहान तक को सफर आपके बहुत पसंद आया होगा। प्रिय किसान भाई, आप भी अपना इना कार्यक्रम को हिस्सा बनी सकता हो। यदि आपका पास गांव की कोई अनोखी खेती की परंपरा, मालवी लोकगीत, चौपाल की याद और खेत खलियान से जुड़े हुए कोई रोचक अनुभव हो तो हमारे जरूर लिख जो। पत्र में आपको पूरा नाम, पतो और मोबाइल नंबर जरूर लिख जो। हमारा पतो है कार्यक्रम मालवी गिटारी गूंज द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भवन विद्यापति नगर उज्जैन मध्य प्रदेश 456010। तो आज का वास्ते आपका अपना मुकेश भैया की आज्ञा दो। बाबा महाकाल से प्रार्थना है आप सबका जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग बनी रहे। फिर मिलांगा गांव से जुड़ा हुआ एक नया विषय के साथ। तब तक का लिए सब किसान भाइयों के राम राम। जय श्री महाकाल।

0: ये आकाशवाणी मध्य
1: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में

0: आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये

आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम

0: विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: धन्यवाद।
0: दिलीप जी, ये जो बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे एमएसएमई सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
1: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर देखें खास तौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति एमएसएमई में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, जीडीपी का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% क्रोड एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप देखें, और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
0: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी अर्थव्यवस्था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। और आपने इसी जुड़ा हुआ सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में। तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है। और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी हो, मैंने आपको 1,000 रुपए का सामान दिया है, तो मैं 1,000 रुपए का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। और इस के अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: सो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का, 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
1: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजेक्शन का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनको बस पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए, तो चार जो है, और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे, तो इन चार चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
0: तो जैसे आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम, और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो तीन स्टेजेस हैं, ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
1: तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप

0: में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर
1: दिया, कोर्ट से बाहर,
0: कोर्ट से बाहर मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। सो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप जॉइंटली एक आर्बिट्रेटर या तीन आर्बिट्रेटर, डिपेंड करता है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल है अगर कोई प्रोसीजरल गैप है, या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो तीन जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन जो है, ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए। तो यानी कि 120 है 6 महीने में, और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते।
1: So, इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना ही होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
0: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है। और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो MSME को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है।
1: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये MSME फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
0: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, MSME फ्रेंडली अप्रोच है, लेकिन आप MSME की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है। और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान नहीं देते। पहले अगर आपको MSME की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए। इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
1: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें वो बहुत जरूरी भी है। जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत तेजी से बदल रहा है। सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप?
0: बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, दूसरा जो MSMEs के पैसे उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था। और जो अभी जो है MSMEs में लोग काम करने से थोड़े से हिचकिचाते थे, क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी इस टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, GST में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और न्याय का ये एक फास्टर रूट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सप्लाई करे और लार्जर कंपनीज सप्लाई करे। तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
1: और एक डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने, हमेशा वर्तमान सरकार ने बल दिया है। सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनिटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
0: डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जनविश्वास 1.0 और जनविश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है. तो इसमें जो वो इंपॉर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए. अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए, क्योंकि एमएसएमई होगा. दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था. और तीसरा है जो एमएसएमई का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन. तो ये अगर आप तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं, और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है.
1: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन जो करने होती है एमएसएमईज को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमईज भी उभर के आए. एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज या स्केलिंग अप जो है एमएसएमईज की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
0: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमईज का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है. तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है. दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमई बिजनेस नहीं कर सकते थे, और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था. अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमई रजिस्टर्ड है. और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तीसरा जो आप देखें तो जेम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमई बिजनेस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में. ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है. तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म, अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, ONDC भी आ रहा है. तो डिजिटल इकोनॉमी, और सबसे बड़ा जो फायदा एमएसएमई के लिए UPI है, और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है. तो डिजिटली एमएसएमई को काफी अच्छा होना चाहिए. और अब AI आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए AI के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर रहे और डिजिटली उसको यूज कर सके.
1: सो एमएसएमई जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में. आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
0: देखिए, अगर एमएसएमई 31% ऑफ द इकोनॉमी है, और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है. और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दें, तो विकसित भारत का लक्ष्य आके सामने नजर आता है.
1: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
0: बिल्कुल उपयुक्त समय पे लाया गया है. और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है. और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे. तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है.
1: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए.
0: धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
3: सुर्खियों में
4: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है. रात के 8:30 हो रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का. आइए संगीत के इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के खास दिन के रूप में. जी हाँ, आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है. तो आइए आज पहला गीत उन्हीं के स्वरों में सुनते हैं.

श्रोताओं, ये मधुर गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप कुमार शानू और अनु मलिक की आवाज़ में सुन रहे थे। गीतकार थे देव कोहली और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुताल्लिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुताल्लिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़हका खेज़ करार दिया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि 2019 और 2026 के दरमियान 36 ममालिक से इक्तिसादी जराइम के मुर्तकिब 274 मफरूर अफराद को वापस भारत लाया गया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है।

0: से। राज्यसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज मंजूर कर लिया, जिसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने ऐवान बाला में इस बिल को पेश किया, जिसका मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन के कानून 1969 में तरमीम करना है। इस बिल को मंजूर करने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल का मकसद पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर को रोकना और लोगों की बरवक्त इंदराज के लिए हौसला अफजाई करना है। इस बिल में ये गुंजाइश मौजूद है कि रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में अगर एक साल से ज्यादा ताहम दो साल से कम की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। बिल के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास पैदाइश और अमवात का इंदराज करने में दो साल से ज्यादा की ताखीर होती है तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हुक्म पर ही किया जा सकता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से हो रहे रजिस्ट्रेशन की इजाजत देने से पहले रिपोर्ट की गई पैदाइश या अमवात की तस्दीक कर लें। पैदाइश और अमवात का रजिस्ट्रेशन लाजमी है और इससे मुतालिक जारी किया गया सर्टिफिकेट किसी फर्द को कानूनी पहचान फराहम करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इससे कबल पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। कुछ अराकीन ने सवाल पूछे जिनका वुजरा ने जवाब भी दिया। ताहम अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी के बाद चेयरमैन ने राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब ऐवान बाला की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत की थी अब आवाम को चढ़ावे की मुबैना चोरी के मामले में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान सभी का है और अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसे तफवीज किए गए वक्त का गलत इस्तेमाल कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा ने आज तख्सीस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 पेश किया। अपोजिशन अरकान नीट पेपर लीक मामले पर तलबा एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई पर बार बार ऐवान ज़ेरीं की कार्रवाई में रखना डालते रहे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के गंजम जिले के तप्तपानी में पवित्र मां कंधुनी देवी गईं और वहां पूजा अर्चना की। ये उनकी आबाई रियासत के जारी 3 रोजा दौरे का एक हिस्सा था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भगवान शिव के कदीमी मंदिर में भी पूजा की। इससे कबल दिन में उन्होंने सदारती रेलगाड़ी के जरिए भुवनेश्वर से बहरामपुर का सफर किया जो दिल्ली से आई थी। बहरामपुर से सदर जमहूरिया ने मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन 75 किलोमीटर सड़क का रास्ता तय किया। ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी उनके हमराह थे। मशखी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान वाकई ये मंदिर माँ कंदुनी देवी को वक्फ है और ये गंधक के कुदरती झरनों के लिए मकबूल है जिनके बारे में अकीदतमंद मानते हैं कि उनमें शिफायाबी की खसूसियात हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के साबिक गवर्नर डीवाई पाटिल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डीवाई पाटिल अपनी इंसान दोस्ती और बिलखसूस तालीम के जरिए समाज की खिदमत करने में हमेशा पेश रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गमजदा खानदान के तई ताजियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में उनके लिए हौसले की दुआ

0: की। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। अदालत आलिया ने रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और बैंकों को भी सिलसिलेवार हिदायत जारी की हैं ताकि शिकायत के इजाले को मुस्तहकम किया जा सके, धोखादही से हासिल की गई रकम की बहाली में तेजी लाई जा सके और डिजिटल धोखादही मामलात से निमटने में बेहतरी पैदा की जा सके। अदालत उज़्मा ने आरबीआई से सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एसओपी की कॉपी फराहम करने को भी कहा है और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो शिकायत के इजाले और रकम की बहाली के तरीक़ेकार को यकीनी बनाने में तेजी लाएं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के प्रोग्राम पर नजरसानी की है। नजरसानी शुदा प्रोग्राम के मुताबिक बूथ सतह के अफसरों की जानिब से घर घर जाकर तस्दीक करने का अमल इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। वोटर फहरिस्तों का मुसविदा इस माह की 24 तारीख को शाया किया जाएगा जबकि हतमी वोटर फहरिस्त अब 27 अक्टूबर को शाया होगी। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि शहरी इस माह की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और एतराजात दाखिल कर सकते हैं। वोटर ऑनलाइन www.voters.eci.gov.in पर इंदिराज का अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मज़ाक़ाखेज करार देते हुए कहा है कि इस तरह के दिखावे से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि असल हकीकत वहां अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी दस्तों की जानिब से बिलावजह हलाकतें हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में कम अज कम 90 शहरियों की जान जा चुकी है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए दावतनामे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल फरवरी में अपना ओहदा संभालने के बाद बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान को भारत के दोतरफा दौरे के लिए बाजाब्ता दावतनामा दिया गया है। उन्होंने मुतला किया कि जहां तक ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस का सवाल है, भारत ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए बिम्स्टेक के मौजूदा सदर की हैसियत से बांग्लादेश के वजीर आजम को अलहदा से एक दावतनामा भेजा गया है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की मीडिया से बातचीत के बारे में तर्जुमान ने कहा कि इसका एहतमाम एक निजी मीडिया कंपनी ने किया था। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इस फोरम पर किए गए इजहार ख्याल के सिलसिले में वो किसी नजरिए की तौसीख करती है। पाकिस्तानी फौजों ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पीओजेके के बाग जिले में आज गैर मुसल्ला शहरियों पर गोलियां चला दी जिसके बाद पीओजेके के में जारी बेचैनी मजीद बढ़ गई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने गैर मुसल्ला शहरियों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेएएसी ने जाए मौके का फुटेज शेयर करते हुए यह बात कही। जेएएसी ने कहा कि पाकिस्तानी फौजों ने मकबूजा इलाके के मुजफ्फराबाद जिले के मकरी खत्ते में शहरियों की मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। ये ताज़ा वाकयात ऐसे वक्त में मंजर आम पर आए हैं जब पाकिस्तानी फौजों ने पूरे पीओजेके में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 50 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। साल 2019 से 2026 के दरमियान 36 मुल्कों से 274 मफरूर मुजरमीन को वापस भारत लाया गया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने मफरूर अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए साल 2018 में मौशी जराय में मुलविस मफरूर अफराद का कानून नाफिज किया। वजारत ने मजीद कहा कि भारत ने मफरूर मुजरिमीन से निमटने के लिए मुनज्जम इंटेलिजेंस की क्यादत वाला और टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल तैयार किया है। वजारत दाखिला ने कहा कि साल 2014 से पहले भारत के सिर्फ 37 ममालिक के साथ हवालगी माहदे थे और इक्तसादी जराइम में फरार लोगों से निमटने या उनकी इमलाक जब्त करने से मुतालिक कोई मखसूस कानून नहीं था। वजारत ने वाज़ेह किया कि साबिका हुकूमतों में मफरूर अफराद को वापस लाने के लिए सियासी अज़्म का फुकदान था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मफरूर अफराद की हवालगी को कौमी तरजीह बनाया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मफरूर अफराद के खिलाफ तीन निकाती हिकमत अमली जैसे आलमी रसाई, मजबूत तालमेल और सूझबूझ पर मबनी सिफारतकारी को अपनाया है। जनाब शाह ने मफरूर मुजरिमीन के मामले को मुल्क की सालमियत, मुआशी इस्तेहकाम, अमन व कानून की सूरत हाल और कौमी सलामती से वाबस्ता इंतहाई अहम मामला करार दिया है। आज फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की परवाज AI-2379 में परवाज के दौरान मुख्तसर तौर पर खराब मौसम के सबब असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उसकी सतह परवाज में तब्दीली करना पड़ी। बहरहाल परवाज दिल्ली में बाहिफाजत उतर गई और सभी मुसाफिर और अमला बाहिफाजत बाहर आ गए। इस तैयारी में 137 मुसाफिर और अमले के 8 अफराद सवार थे। एयर इंडिया ने कहा है कि इनमें से 13 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को चोटें आई हैं और उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दौलत मुश्तरक खेलों में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद मुल्क लौटे भारतीय खिलाड़ियों का आज खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलीट शामिल हैं। नई दिल्ली में मुनक्कदा इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सोने के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 30 लाख रुपए, चांदी के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए और कांसे के तमगे जीतने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। एथलीट से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने उनसे खेल के करियर से आगे सोचने और भारतीय खेल की अगली नस्ल तैयार करने में ताउन करने वाले बनने की अपील की। बैडमिंटन में आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की 6 दर्जे की चालुमपोन और वोरापोल थांगसाइंगा की जोड़ी को 21-16, 21-18 से शिकस्त देकर मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। और आखिर में खास खबरें पर फिर पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात से मुतालिक इंदिराज के तरमीमी बिल 2026 को मंजूर कर लिया है ताकि ताखीर से इंदिराज को ज्यादा सख्त बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधही से मुंसलिक बैंक खातों से निमटने के सिलसिले में कामकाज के मियारी जाब्ते तैयार करने और उनसे मुतालिक मालूमात आम करने की हिदायत दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद बल्दियाती इंतखाबात को मजका खेज करार दिया है। खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो दौलत मुश्तरक खेलों में तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की है और बैडमिंटन में आसन में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय की भारतीय जोड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां में रुश्दा अपने तमाम सुनने वालों का खैर मकदम करती है। सामईन, आज का कहकशां प्रोग्राम महफिल समा पर मबनी है और इसका मौजू है अमीर खुसरो की सूफियाना शायरी और इश्क हकीकी। सामईन, अदबी, तहजीबी और रूहानी तारीख में अमीर खुसरो का नाम एक ऐसी दरख्शां शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जिसने मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत को अपनी शायरी के ज़रिए हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। आपको तूतिय हिंद कहा जाता है। आप सिर्फ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि मौसिकार, दानिश्वर और अपने अहद के मुमताज़ सूफ़ी भी थे। 1253 में पटियाली में पैदा होने वाले अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदवी जबानों को अपनी शायरी का वसीला बनाया। उनके कलाम में हिंदुस्तान की तहजीब, मोहब्बत

मारूफ सूफियाना कलाम मन कुंतु मौला में मिलता है। ये कलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तारीखी इरशाद से माखूज़ है, मन कुंतु मौला फ़ाला मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। सूफिया इकराम ने इस इरशाद को मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई की अलामत के तौर पर अपनाया। उनके नज़दीक हज़रत अली मारिफत शजात और रूहानी कमाल का वो रोशन चराग हैं जिसकी रोशनी इंसान को अल्लाह की मारिफत तक पहुँचने का रास्ता दिखाती है। इसीलिए सूफियाना महफिल में मन कुंतु मौला सिर्फ एक कव्वाली नहीं बल्कि अकीदत मोहब्बत और रूहानी वाबस्तगी का इजहार बन जाती है। ये कलाम हमें याद दिलाता है कि इश्क हकीकी सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत वफादारी अखलाक और इंसानियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का नाम है। तो आइए सामीन समाअत फरमाइए, अकीदत और रूहानियत से लबरेज ये खूबसूरत कव्वाली आबिदा परवीन की आवाज़ में, मन कुंतु मौला।

सामईन इकराम, अमीर खुसरो की शायरी 700 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी उसी तरह ताज़ा महसूस होती है, क्योंकि उसकी बुनियाद मोहब्बत, इखलास, रवादारी और इंसान दोस्ती पर कायम है। उनका पैगाम हमें ये सिखाता है कि अगर दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से रोशन हो जाए तो इंसान के किरदार में आजिज़ी, मोहब्बत और खिदमत खल्क खुद ब खुद पैदा हो जाती है। आज के दौर में जब माशरा नफ़रत, बेचैनी और मादा परस्ती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुज़र रहा है, अमीर खुसरो की सूफियाना शायरी हमें मोहब्बत को तकसीम करने, दिलों को जोड़ने और इंसानियत की खिदमत करने का सबक देती है। यही उनके कलाम की असल रूह है और यही इश्क़ हकीकी का हकीकी मफहूम भी। इसी पैगाम के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ रिश्ता को इजाज़त दीजिए। आदा।

प्रियतमा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी किशोर कुमार की। गीत लिखा था योगेश ने और संगीत था राजेश रोशन का।

मेरे जीवन साथी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके जिसके लिए गीत लिखा था मजरूह ने, संगीत था आर डी बर्मन का और आवाज़ थी किशोर कुमार की।

सत्य पे सत्ता इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी किशोर कुमार अनीते पिंटो की, और गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीत था आर डी बर्मन का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चैताली शिवलीकर का राग यमन में वायलिन वादन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में चैताली शेवलीकर का राग यमन में वायलिन वादन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और

0: मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the Upper House, which aims to amend

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य। एके भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया।
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this.

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

खान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर ही रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 5:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।